0: यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री दिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि म्यांमा के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
3: म्यांमा के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ओमी नाउलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं।

0: राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
1: आज डी के शिवकुमार राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रूपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रूपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा

0: के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमरीका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक कोई स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिंट नाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 110.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। कुछ ही देर में हम सुनेंगे फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम जय भारती।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल

थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है ये।

0: Cena.
1: फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम जय भारती का ये पहला गाना, इसे हमने लिया है फिल्म धरती कहे पुकार से। आवाज है मोहम्मद रफी की।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी हम सुन रहे थे फिल्म जिगरी दोस्त का ये गाना। और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है नई इमारत।

0: अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले
1: जरा।

0: खुदगर्ज के इस गीत के साथ ही अब आज का हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामलों की जांच कर रही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जेएसएससी से महत्वपूर्ण जानकारी मांगी है। समिति ने जिला, विषय और वर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या तथा वर्तमान रिक्तियों का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। संबंधित विभागों को आवश्यक आंकड़े शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि इससे नियुक्ति प्रक्रिया और रिक्त पदों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। देश भर के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित CUET UG 2026 परीक्षा आज कुछ केंद्रों पर तकनीकी खराबी के कारण देरी से शुरू हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने यह जानकारी दी। NTA के अनुसार समस्या अब दूर कर ली गई है और सभी अभ्यर्थियों को पूरा प्रतिपूरक समय दिया जा रहा है ताकि किसी भी अभ्यर्थी को नुकसान न हो। सहायता के लिए NTA ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। राज्य के गेतलसूद, तेनुघाट और मैथन सहित प्रमुख जलाशयों में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्रीय संस्थान मुंबई के वैज्ञानिक डॉ. श्रवण कुमार शर्मा ने क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया है। उन्होंने जलाशयों में वैज्ञानिक तकनीक, उन्नत जाल और सौर ऊर्जा चालित नावों की जानकारी ली है। मत्स्य निदेशक अमरेंद्र कुमार के अनुसार अब आधुनिक तकनीकों और मछुआरों के प्रशिक्षण से राज्य में पर्यावरण अनुकूल मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे मछुआरों की आजीविका में सुधार होने की प्रबल संभावना है। देश भर में जून महीने के लिए बैंकों की छुट्टियों की सूची जारी कर दी गई है। झारखंड समेत विभिन्न राज्यों में त्योहारों, साप्ताहिक अवकाश और अन्य अवसरों को मिलाकर बैंक कुल 11 दिनों तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे बैंक शाखाओं से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य समय रहते निपटा लें। भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। CBI ने CCL के रामगढ़ के गिद्दीसी परियोजना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों समेत 5 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने मामले से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं। CBI ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और आगे भी कार्रवाई की जा सकती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चतरा जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस अधिकारी नागर गोजे शुभम भाव साहेब ने बताया कि तस्करों के पास से 1 किलो से अधिक मादक पदार्थ बरामद की गई है, जिसकी कीमत बाजार में करीब 6 लाख रुपए है।
2: सशस्त्र बल के एफर्ट से 2 लोगों को पकड़ लिया गया, लेकिन 1 भागने में सफल रहा। दोनों भी लावालौंग के रहने वाले हैं। जो भाग गया उसका नाम है सरफराज खान। सरफराज खान एक तरह से इसमें खरीदी करने के लिए आया था अफीम का। ये जो 2 लोग थे ये लोग बिक्री के लिए आए थे। अब उनके पास से जो अफीम बरामद हुआ है उसका कुल वजन था 1 किलो 113 ग्राम।
1: जामताड़ा जिले में एक ज्वेलरी व्यवसायी से लाखों रुपए मूल्य के सोना चांदी के आभूषणों की लूट की गई है। पुलिस के अनुसार फतेहपुर बाजार में हथियारबंद 5 अपराधियों ने व्यवसायी को रोककर गहनों से भरा बैग छीन लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने IPL में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वैभव को झारखंड स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इससे युवाओं में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। जामताड़ा जिले में कल देर शाम से शुरू हुए राज्य स्तरीय बालिका वर्ग खो खो प्रतियोगिता में 16 जिलों की टीम भाग ले रही है। जिला खो खो संघ के उपाध्यक्ष चंचल भंडारी ने कहा कि 3 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता का आयोजन करना जामताड़ा के लिए गौरव का क्षण है।
3: जामताड़ा जिला में राज्य स्तरीय बालिका वर्ग के लिए खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जो 3 दिवसीय चलना 31 मई को इसका समापन है। इसमें लगभग 16 जिला से टीम आई हुई है और हो सकता है कि और 2 टीमें में शिरकत करे। गर्व की बात है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जामताड़ा जिला को मिला।
1: और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
4: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं।

0: माय गॉव पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डाले, और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर लिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई ना कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।
1: आइए सुनिए फिल्म संगीत। ये पहला गाना, इसे हमने लिया है फिल्म सिंघम से। आवाजें हैं श्रेया घोषाल और अजय की। बोलो को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने, धुन तैयार की है अजय अतुल ने।

अजब प्रेम की गजब कहानी। इस फिल्म का गीत अभी हम सुन रहे थे सोहम, राणा मजुमदार और आशीष पंडित की आवाज़ में। इरशाद कामिल के बोल थे और प्रीतम का संगीत। आइए सुने अनुराधा श्रीराम, सुजाता, सोनू निगम और एआर रहमान की आवाज़ में फिल्म ताल का ये गाना। आनंद बख्शी के बोल हैं और एआर रहमान का संगीत।

रांची मेलोडीज का ये अगला नगमा कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम। बोलो को लिखा है महबूब ने, धुन तैयार की है इस्माइल दरबार ने।

इस गाने में कविता कृष्णमूर्ति और उस्ताद महबूब की आवाज है।

फिल्म संगीत रांची मेलोडीज आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। क्यों हो गया ना, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवाते हैं साधना सरगम और उदित नारायण की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल हैं, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

आइए सुनते हैं फिल्म तलाश का ये गाना सोना महापात्रा की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल हैं और राम संपत का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही आज का हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रांची मेलोडी संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामलों की जांच कर रही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जेएसएससी से महत्वपूर्ण जानकारी मांगी है। समिति ने जिला, विषय और वर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या तथा वर्तमान रिक्तियों का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। माना जा रहा है कि इससे नियुक्ति प्रक्रिया और रिक्त पदों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। देश भर के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित CUET UG 2026 परीक्षा आज कुछ केंद्रों पर तकनीकी खराबी के कारण देरी से शुरू हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने यह जानकारी दी। NTA के अनुसार समस्या अब दूर कर ली गई है और सभी अभ्यर्थियों को पूरा प्रतिपूरक समय दिया जा रहा है ताकि किसी भी अभ्यर्थी को नुकसान न हो। सहायता के लिए NTA ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। देश भर में जून महीने के लिए बैंकों की छुट्टियों की सूची जारी कर दी गई है। झारखंड समेत विभिन्न राज्यों में त्योहारों, साप्ताहिक अवकाश और अन्य अवसरों को मिलाकर बैंक कुल 11 दिनों तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे बैंक शाखाओं से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य समय रहते निपटा लें। भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। CBI ने CCL के रामगढ़ के गिद्दीसी परियोजना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों समेत 5 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने मामले से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने IPL में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वैभव को झारखंड स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इससे युवाओं में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से हम बोल रहे हैं। आइए सुनिए कल्याणी। प्रस्तुति है संजीव कुमार लाल की, प्रस्तुति स्वर सुनीता कुमारी का।

नमस्कार, कल्याणी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस कार्यक्रम में मैं हूँ सुनीता। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के जरिए हम देश, समाज, परिवार से जुड़ी बातें आपसे करते हैं। बहुत सारी ऐसी विषयों पर चर्चा करते हैं आपसे जो हमसे जुड़ी रहती है। बात अगर हम अपने आसपास अपने समाज की करें तो बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें देखकर मन में कई सवाल उठते हैं। कभी हमने ये सोचा है कि समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी मन में ये ख्याल आता है कि समाज के प्रति भी हमारी जिम्मेवारी है। थोड़ा सा ऐसा काम हमें ज़रूर करना चाहिए जिससे समाज में परोपकार की भावना बढ़े, समाज को सकारात्मक दिशा मिले। एक वाक्य है, सेवा परमो धर्मा, यानी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन शायद ही हम में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो समाज के लिए या देश के लिए, परिवार के लिए बहुत कुछ कर पाते होंगे, क्योंकि आज की दौड़ती भागती जिंदगी में हम खुद ही इतने व्यस्त हो गए हैं कि किसी और के लिए कुछ भी करना या सोचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन ज़रूरी है कि थोड़ा सा वक्त हम समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए ज़रूर दें, क्योंकि मानवता का पाठ हमें समाज से ही मिलता है। समाज से ही हम बहुत सारी ऐसी बातें सीखते हैं जो हमारे जीवन में काम आती है। समाज सेवा हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर करुणा और प्रेम सिखाती है। साथ ही यह शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसे कार्य समाज को मजबूत और समर्थ बनाते हैं। तो

0: हम उनकी मदद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही हम किसी की सेवा कर सके या उसकी सहायता कर सके। मानसिक तौर पर हम उसे संबल प्रदान कर सकते हैं, उन्हें जिस चीज़ से समस्या है या जिस चीज़ की ज़रूरत है उसमें हाथ बटा सकते हैं। आध्यात्मिक शांति से आत्मा शांत होती है और दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने से मानसिक शांति मिलती है, जो किसी भी धर्म से, परोपकार से ऊपर है। समाज सेवा करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसे हों। छोटे छोटे बदलाव करके आप समाज की सेवा कर सकते हैं, जैसे रक्तदान करके आप सेवा कर सकते हैं। जरूरतमंदों के लिए ब्लड बैंक में आप रक्तदान करिए, वो भी समाज सेवा का ही हिस्सा है, वो भी सामाजिक धर्म है। या शिक्षा के तौर पर आप अपनी सेवा दे सकते हैं। अगर आसपास आपके गरीब बच्चे हैं तो उन्हें पढ़ाने के लिए सप्ताह में एक दिन का ही समय दे, ताकि वो शिक्षित हो सके। साथ ही पर्यावरण के तौर पे भी आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि सिर्फ पूजा पाठ करना ही धर्म नहीं है, सच्चा धर्म वह है जो हमें मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देता है। कभी आप किसी भूखे को भोजन कराकर देखिए, आपको कितनी खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। किसी जरूरतमंद की मदद कर देखिए। जब हम वास्तव में ईश्वर की पूजा कर रहे होते हैं तो हम भगवान से जुड़े होते हैं, लेकिन जब हम किसी की मदद कर रहे होते हैं ना, उस वक्त भगवान हमसे जुड़ा होता है, और ये एक बेहतरीन उद्देश्य होता है हमारे जीवन का। समाज सेवा में ना कोई भेद, ना कोई स्वार्थ, कुछ नहीं होता है। समाज सेवा वह मार्ग है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है और समाज को प्रेम, करुणा और एकता के सूत्र में पिरोता है। संकल्प हमें ये करना चाहिए कि हमारे हर कर्म में समाज की भलाई दिखाई पड़े, उसकी झलक दिखाई पड़े कि समाज सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो थोड़ी सी सहभागिता हम और आप मिलकर भी समाज के प्रति निभाते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने आसपास लोगों की मदद कर सकें। अपने लिए तो हर कोई जीता है, कभी दूसरों के लिए एक दिन ही सही जी कर देखिए, आपको बहुत खुशी मिलेगी और आपको खुशी के साथ बहुत सुकून मिलेगा कि आपने कुछ बहुत अच्छा किया है। समाज सेवा एक धर्म है, इसका मौका हर किसी को नहीं मिलता। भगवान ने यदि हमें इस लायक बनाया है तो हमें हर हाल में जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ऐसे कार्य करें जो दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। समाज सेवा में आगे बढ़कर थोड़ी हिस्सेदारी जरूर निभाएं। जब हम समाज सेवा में शामिल होते हैं ना, तो हम केवल जरूरतमंदों की मदद कर रहे होते हैं, बल्कि एक अच्छे उद्देश्य को भी पूरा कर रहे होते हैं। उनका आशीर्वाद, उनका अपनापन हमारे लिए वो अनमोल धन है जिससे सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन में शांति आएगी। समाज सेवा हमारी मानवता की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है और हमारे अपने से बड़ी किसी चीज से जुड़ाव है। दूसरों की सेवा करके हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस प्यार और अपनेपन के साथ थोड़ी सी भागीदारी समाज में निभाइए, देखिए आपको बहुत खुशी मिलेगी। और बातें हम कर रहे हैं समाज सेवा की, या किसी भी काम को करने के लिए जरूरी होता है कि हम स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। और ऐसा तब होता है, हम खुश तब रहते हैं जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और हमारा स्वास्थ्य तभी अच्छा रहेगा जब हम अपनी रूटीन, अपनी दिनचर्या जो कि कहा जाता है, उसे सही रखेंगे। लेकिन आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे सभी लोगों को प्रायः परेशानी हो रही है। तो आज इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ ऐसी ही जानकारी देंगे जो शायद धीरे धीरे आम बनते जा रही है। 10 में से प्रायः 7 लोग आपको ऐसा कहते मिल जाएंगे कि मुझे तो फैटी लिवर की शिकायत है। आखिर फैटी लिवर होता क्यों है, इसके कारण क्या है, इसको सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे फैटी लिवर और आपका लिपिड प्रोफाइल, और इन सारी बातों की जानकारी हमें देंगे हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विनय कुमार, और उनसे बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों जोहार, नमस्कार। मित्रों, आजकल की जीवन शैली में हमारा खान पान काफी बिगड़ गया है, फास्ट फूड का सेवन हम करने लग गए हैं, और ऐसे में हम फैटी लिवर के शिकार हो जा रहे हैं। जब हम फैटी लिवर के शिकार हो जाते हैं तो उसके साथ और भी बीमारियां जुड़कर चली आती है। और साथ साथ आज हम बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल के बारे में कि आपका लिपिड प्रोफाइल क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है

0: और हमें इस जांच से क्या पता चलता है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं ऑर्किड हॉस्पिटल के डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर विनय कुमार। डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, आजकल की बदलती जीवन शैली में फैटी लीवर के बहुत मरीज शिकार हो जा रहे हैं, क्या कारण है?
1: कारण हमारा सिडेंट्री लाइफस्टाइल है और ट्रेडिशनल फूड को छोड़ के जो सिंथेटिक फूड को अपना रहे हैं उसमें ट्रांसफैट की मात्रा बहुत रहती है। हमारा डेली वर्कआउट बहुत कम रहता है और जो कंजम्पशन है फैट का वो मैसिव है, डेट टू ट्रांसफैट बहुत ज़्यादा है। कोई भी स्नैक्स का पैकेट उठा के देख लीजिए, उसमें मैक्सिमम आप देखेंगे पाम ऑयल यूज़ होता है। हम लोग को अपना एक फैट का इनटेक पे कंट्रोल रखने की बहुत आवश्यकता है। अब फैटी लीवर की जांच कैसे होती है? जब भी कोई व्यक्ति को कुछ पेट में दर्द होता है या भारीपन होता है तो हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासाउंड कराइए। जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उससे पता चलता है उसको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 या ग्रेड 3 फैटी लीवर है। फैटी लीवर तो जीवन शैली का एक पात्र है लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा है। अगर फैटी लीवर को अगर हम लोग कंट्रोल नहीं करें तो आने वाले समय में हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, हमको कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, ब्लॉकेजेस हो सकता है जिसके चलते हार्ट अटैक हो सकता है, और इंसुलिन रेसिस्टेंट डेवलप करता है जिसके चलते हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा रहते हुए भी हम टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं। आज की डेट में हमारे यहाँ नंबर ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट की संख्या वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमारे देश को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है। आज के समय में हमारे यहाँ लगभग 90 से 101 बिलियन की टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो, लेकिन अगर हम सजग रहें, डेली अपना लाइफस्टाइल सुधारें, वर्कआउट करें, डेली 40 मिनट्स वॉक करें, योगा करें और अपने खान पान पे जागरूक रहें, अपना टाइम टू टाइम लिपिड प्रोफाइल कराते रहें तो इस चीज़ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं
0: जी।
1: लिपिड प्रोफाइल का की उपयोगिता क्या है, बहुत लोग नहीं जानते लिपिड प्रोफाइल होता क्या है। तो लिपिड प्रोफाइल एक वसा की, फैट की, शरीर में जो विभिन्न प्रकार के जो फैट होते हैं, जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, VLDL हो गया, LDL हो गया, HDL हो गया। तो पहले इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल में HDL आता है, बैड कोलेस्ट्रॉल VLDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल आता है। बैड कोलेस्ट्रॉल में LDL और VLDL सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, स्पेशली LDL, जिससे कि मेजर ब्लॉकेजेस होते हैं हार्ट में और हार्ट अटैक होता है। अभी जो लेटेस्ट जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के अकॉर्डिंग LDL की मात्रा 70 से कम होनी चाहिए, अगर सेफ जोन में 70 से कम होनी चाहिए। VLDL की मात्रा 30 से कम होनी चाहिए। अगर हमारा VLDL LDL अगर कम है और ट्राइग्लिसराइड और टोटल कोलेस्ट्रॉल हल्की बढ़ी हुई भी है तब भी हम इसको अपना अगर डाइट कंट्रोल रखें और फैट का इंटेक कम रखें तो हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हमारा ट्राइग्लिसराइड सही है, ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है या टोटल कोलेस्ट्रॉल ठीक है तो वो निश्चिंत हो जाते हैं, वो LDL पे ध्यान नहीं देते हैं, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग मिस कर जाते हैं ऑफन, और इसी के चलते लोग इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है और उसके चलते आगे उनका डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं लोग हमारे यहाँ, इसके लिए डायबिटीज़ के मरीज बढ़ते जा रहे हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, यदि कोई व्यक्ति फैटी लीवर का शिकार हो जा रहा है तो पता चलता नहीं है, ऐसा कोई सिम्टम नज़र नहीं,
1: नहीं
0: आता
1: होता है,
0: है
1: किसी को भारीपन लगता है, किसी को ऑफन इंडाइजेशन होता है, कभी उसको हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन डेवलप कर रहा है, कभी अचानक से लूज मोशन होने लगा, ये अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं जो सिम्टम्स आते हैं लोगों को। पेट का भरापन रहना, पेट लगेगा कि खाली नहीं हुआ, बॉवल मूवमेंट सही नहीं होता है, तो इस टाइप के लोगों को इस टाइप के लक्षण पहले आते हैं। और इसके अलावा शरीर में बहुत तेज़ी से जैसे लोग चलते हैं तो हफने लगते हैं, बहुत लोगों में ऐसा भी होता है, कुछ दूर चल रहे हैं नॉर्मल 2-3 सीढ़ी चढ़े तब भी हफने लगते हैं, तो इस टाइप की लक्षण पहले से कुछ कुछ आते हैं लोगों में
0: जी। लक्षण दिखलाई पड़ जाते हैं फैटी लीवर के। डॉक्टर साहब, फैटी लीवर से कोई व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, चाहे वो ग्रेड 1 हो या ग्रेड 2 हो, कैसे अपना बचाव करें, जीवन शैली में किस प्रकार सुधार करें, कौन कौन सी खान पान से दूरियाँ बनाएं और कौन कौन सी अच्छी चीज़ें का वो सेवन करें?
1: देखिए, ट्रेडिशनल फूड को अपनाएं, सिंथेटिक फूड से दूरी बनाएं, जितने केक पेस्ट्रीज और पिज्जा बर्गर्स की जो प्रचलन है उसको कम करें। जैसे हम लोग घी खाते हैं, अगर शुद्ध घी अगर हम लोग मिले तो उसका सेवन बढ़ाएं, लेकिन शुद्ध

0: को अगर हम लोग जला के खाते हैं, उसका पराठा बना के खाते हैं, तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है। अगर उसको दाल में डाल के या चपाती पे लगा के खाएं तो दैट एक्ट्स एज ए गुड कोलेस्ट्रॉल और वो एचडीएल बढ़ाता है। तो हम लोग को फोकस करना चाहिए जो भी हमारे फूड में फाइबर युक्त जो भी हम खाना है, जैसा अगर फल की बात करें तो जैसे सेब हो गया, आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया, ये सब का हम लोग को इंटेक बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा जैसे काजू है उसका इंटेक कम करना चाहिए, रेड मीट का नॉन वेजिटेरियन फूड को थोड़ा सा कम करना चाहिए, अवॉइड करें जितना हो सकता है कि हरी सब्जियां, साग पालक ये सब का सेवन बढ़ाएं। जैसे राइस ब्रान ऑयल होता है उसमें लीस्ट कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर छानने के लिए यूज कर रहे हैं तो उसका यूज कर सकते हैं, हल्के तेल होता है उससे भी कोलेस्ट्रॉल का कम बढ़ता है हमारे शरीर में। डेली कम से कम 40 मिनट समय निकाले, 40 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करें, योगा करें, और इसके अलावा नियमित अपना एक फाइबर जैसे चना है, मूंग है, अंकुरित अनाज है, ये सब का सेवन बढ़ाएं अपने डेली खाने में।
1: जी, अपनी लाइफ स्टाइल को हमें सुधारना पड़ेगा, अपना खान पान पर हमें नियंत्रण करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, लिपिड प्रोफाइल जांच कराने के बाद यदि उसमें काफ़ी वेरिएशन दिखता है, काफ़ी असंतुलन दिखता है, गड़बड़ें आती हैं उसमें, तो कैसे इसमें सुधार किया जाए?
0: पहले तो इसमें उनको अपना जीवन शैली को सुधारना होगा, वर्कआउट करना होगा और अपना डाइट कंट्रोल करना होगा, फैट का इंटेक कम करना होगा, फाइबर युक्त चीज़ें हैं उनका सेवन बढ़ाना होगा। इसके अलावा दवाइयाँ होती हैं बहुत सारी, अभी नई दवाइयाँ आई हैं जो कि शॉर्ट पीरियड, ऐसा नहीं है लोग सोचते हैं कि नहीं एक बार हमने शुरू कर दिया तो हमको लाइफ लॉन्ग खाना है, वैसा कुछ नहीं होता है। अभी के समय बहुत सी अच्छी नई दवाइयाँ आई हैं जिसको 2-3 महीना ही खाने से आपका 3 से 4 महीना में फैटी लिवर एंड एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल आपका नॉर्मलाइज कर देता है, और उसके बाद आप पूरी तरह से उसको उस दवाई को छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन भर उसको खा रहा है, हाँ, लेकिन जीवन भर आपको नियमित व्यायाम, नियमित वर्कआउट और डाइट कंट्रोल से तो रहना ही पड़ेगा। अगर आपका ये सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं अनियमित जीवन शैली से ही, तो आपका नियमित जीवन शैली रहेगा। अच्छा, प्रॉपर स्लीप लेने से भी आप 6 से 7 घंटा स्लीप नहीं लेते हैं, नींद आपकी अच्छी नहीं है, तो उससे भी इस पे बहुत प्रभाव पड़ता है। स्ट्रेस लेवल से भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फैट बढ़ता है, इवन कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है। तो हमें कम से कम 6 से 7 घंटे अच्छी नींद लेनी चाहिए। इसके अलावा सोने से पहले मोबाइल का को ऑफ करके अगर कोशिश करें कि तो 1-2 मीटर दूर पे अपना रख दें। अगर रात में आप मोबाइल देख रहे हैं सोते समय तो फिर नींद अच्छी नहीं आएगी, नींद अच्छी नहीं आएगी तो सुबह में फ्रेश नहीं फील करेंगे, स्ट्रेस लेवल रहेगा और उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर और कार्बोहाइड्रेट में इजाफा होता है।
1: फैटी लिवर की समस्या से ग्रसित होने के उपरांत यदि हम दवाइयाँ गोलियों का सेवन नहीं करते हैं, अपना खान पान नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, तो फिर ये धीरे धीरे आपको इस शुगर की बीमारी की ओर ले जाता है।
0: देखिए, अगर फैटी लिवर अगर बहुत लंबे समय तक किसी के शरीर में है तो उससे इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है कि आपके शरीर में इंसुलिन की प्रचुर मात्रा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, रिसेप्टर मास्क पे वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो अगर फैटी लिवर को अगर हमने बहुत से केसेस देखे हैं जिसमें कि अगर हम लोग इनिशियल स्टेज ऑफ डायबिटीज़ है और फैटी लिवर है, अगर उसको उसके फैटी लिवर को हमने ठीक किया तो वो लगभग उसका डायबिटीज़ ऑलमोस्ट, अगर उसका जीवन शैली भी वो उसने अपने सुधार लिया, डेली वर्कआउट कर रहा है, डाइट कंट्रोल है, तो हमने देखा है कि उनका इवन डायबिटीज़ की दवाई भी छूट जाती है और उनका डायबिटीज़ है वो रिवर्ट हो जाता है। फैटी लीवर बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं कि सोचते हैं कि नहीं इसमें क्या ज़रूरत है, ये तो बहुत जीवन शैली से सुधार लेंगे। जीवन शैली से सुधरता है लेकिन अगर उस पर ध्यान दे के, अगर जागरूक होकर उसको सुधारे तो आने वाले समय में उनको डायबिटीज़ का खतरा लगभग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, हमें अपने जीभ पर नियंत्रण रखना पड़ेगा और मीठी चीज़ों से भी दूरियां बनानी पड़ेगी, और जो चटपटी चीज़ें फास्ट फूड का हम सेवन करते हैं इससे भी हमें दूर होना पड़ेगा। क्या कहेंगे सुनने वाले साथियों को आप?
0: जी बिल्कुल, जैसे हमें क्या नहीं खाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो जैसे आजकल कुछ भी सेलिब्रेशंस होते हैं तो आमतौर पे लोग केक्स, बर्गर, पिज्ज़ा, जो भी वेस्टर्न फूड कल्चर है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना जीवन में अपनाते जा रहे हैं, उसको हम लोग को कम से कम मिनिमाइज़ करना चाहिए, और जितना हम लोग ट्रेडिशनल फूड अपनाएं वो ज़्यादा अच्छा है, और फाइबर युक्त चीज़ें लें, खीरा है, अभी सेब है, ये सब का सेवन बढ़ाएं। अनाज का सेवन करें, अच्छा से फाइबर युक्त अनाज, जैसे रागी है, आपका बाजरा है, मूंग है, अंकुरित मूंग है, चने हैं, ये सब का सेवन बढ़ाएं। कच्चा प्याज कच्चा लहसुन खाने से भी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, तो उसका सेवन करें। ठीक है, पानी का भरपूर मात्रा लें, पानी कम से कम गर्मी के दिन में 4 से 5 लीटर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसके अनुपात में नहीं लेते हैं तो आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा, उससे स्टोन का खतरा आपको हो सकता है। मेटाबॉलिज्म के लिए वाटर भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप अपना जीवन शैली को सुधारें और फैटी लीवर से दूर रहे, डायबिटीज़ के खतरे से बचे।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनय कुमार, डायबिटोलॉजिस्ट और किड हॉस्पिटल रांची, आज आप इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने मित्रों का भी ख्याल रखिएगा। नमस्कार।
2: फैटी लीवर और आपका लिपिड प्रोफाइल, इस विषय पे अभी आप डॉक्टर विनय कुमार से संजीव कुमार लाल की बातचीत सुन रहे थे। तो श्रोताओं, स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा वक्त हमें अपने आप को भी देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि ज़िंदगी में बहुत सारे काम हैं जो करने होते हैं, करना पड़ता है। तो इसको ध्यान में रखकर अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए अपने स्वास्थ्य का ख्याल ज़रूर रखिए। और इस कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा बातें आज आपसे हमने कर ली है, तो एक प्यारा सा खूबसूरत सा गीत हम आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओं, आज जीवन की बातें हो रही है, समाज की बातें हो रही है, अनुशासन की बातें हो रही हैं और मेहनत की बातें हो रही हैं, तो और एक विषय पे कुछ बातें हम आपसे और चर्चा करना चाहेंगे। अक्सर हमें जीवन में वो बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाती जो हम पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, और कई बार अगर हम उन चीजों को पा लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारे जीवन से खो जाती हैं। यानी इस बात को ऐसे कहें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह जीवन का एक गहरा और व्यवहारिक सच है। इसका अर्थ केवल भौतिक नुकसान से नहीं, बल्कि बेहतर भविष्य के लिए वर्तमान के आराम, बुरी आदतों या आलस्य को त्याग करने से है। बड़े लक्ष्य के लिए छोटे सुखों का त्याग करने से ही सफलता की कुंजी मिलती है। बड़े सपने देखने वालों को बिना शिकायत के मेहनत, आराम में कटौती और त्याग करना पड़ता है, और अनुशासन और निरंतरता ही सफलता की कीमत है। कुछ नया और बड़ा हासिल करने के लिए हमें अपना वर्तमान उसी दिशा में लगाना पड़ता है जिस समय का वक्त हमारे मनोरंजन या आराम करने का होता है। अगर हम अपने मनोरंजन और आराम का ख्याल रखें, अपने सुख सुविधाओं का ख्याल रखेंगे, तो वो चीज हमें नहीं मिलेगी जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। इसलिए अगर हम अपने आराम, अपने सुख का त्याग करते हुए उस लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से आगे बढ़ेंगे, तो हमारा लक्ष्य हमें हासिल होगा। किसी भी चीज को पाने के लिए दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों का मानना बहुत जरूरी है। जीवन में कुछ पाने के लिए वास्तव में कुछ खोना नहीं पड़ता, बल्कि सही दिशा में कुछ करना या बदलाव करना पड़ता है। जैसे बुरी आदतें छोड़नी पड़ती हैं, द्वेष और आलस को छोड़ने से जीवन अपने आप बेहतर बन जाता है। साथ ही प्रकृति के अपने नियम है जिसमें शारीरिक और मानसिक संतुलन हमें बनाकर रखना पड़ता है। किसी चीज का उपयोग दूसरी चीज के लिए करना पड़ता है। यदि हम कैरियर की ऊंचाइयों में छूना चाहते हैं, हमें अपनी नींद और व्यक्तिगत समय का एक हिस्सा उसमें काम को देना पड़ेगा। साथ ही अगर हमें कोई भी ऐसी चीज चाहिए जिसका लक्ष्य हमने सोचा है, तो उसके लिए हमें मेहनत और समय देना पड़ेगा, अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ेगा। यहाँ खोने से मतलब ये नहीं कि आपकी धन संपत्ति खो जाएगी, यहाँ खोने से मतलब ये है कि मेहनत अगर आपने नहीं की तो आपका लक्ष्य खो जाएगा, आपका भविष्य थोड़ा पीछे चला जाएगा, आप जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने भौतिक सुखों का थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। एक चीज खरीदने के लिए आपको दूसरी चीज का खर्च कम करना ही पड़ता है, तभी वो महंगी चीज जो आप खरीदना चाहते हैं वो आपके हिस्से आ पाएगी। किसी नई आदत को अपनाने के लिए अपनी पुरानी मान्यताओं या आरामदायक जिंदगी से बाहर निकलना ही पड़ता है। यदि हमें परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं, करियर में आगे बढ़ना है, तो मौज मस्ती और सोने के समय का त्याग करना पड़ेगा। कहने का सार बस इतना ही है कि किसी बड़े लक्ष्य, सफलता या उपलब्धि को हासिल करने के लिए आपको अपने वर्तमान के आराम, बुरी आदतों या सुखों का बलिदान करना पड़ेगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उस लक्ष्य पर आगे बढ़े, और जब आपका वो लक्ष्य मिल जाएगा तो आपके पास सारी वो चीजें हो जाएंगी जो मेहनत करते वक्त आपसे शायद पीछे छूट गई हो। तो आप अपने जीवन में खुश रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपनी मंजिल को ऊंचाइयों तक लेकर जाए, यही कामना हम करते हैं। आज के कल्याणी के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम से सुनीता आपसे लेती है विदा। नमस्कार। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं संजीव कुमार लाल।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल्याणी, प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की थी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सांझ सरगम।

श्रोताओं, आप सुनेंगे सांझ सरगम। उससे पहले हम आपको बता दें आज रात तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे यानी कि 4:35 पर सांझ सरगम, इसके अंतर्गत फिल्म संगीत। 5 आप सुनेंगे मुख्य समाचार। 5:02 पर युवाओं को संबोधित कार्यक्रम होगा युववाणी।

5:30 पर आप सुनेंगे हमारा औद्योगिक प्रसारण श्रमिक लोक, प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की। छह बजे मुख्य समाचार, 6:02 पर आप सुनेंगे किसान वाणी, प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की। 6:32 पर आप सुनेंगे हमारी दुनिया, प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं 7:00। 7:15 पर आप सुनेंगे लोकगीत के अंतर्गत हो लोकगीत, कलाकार होंगे दुखू सिंह और उनके साथी। शाम 7:20 पर आप सुनेंगे क्षेत्रीय समाचार। 7:45 पर समाचार ध्वनि चित्र। 8:00 रजनीगंधा के अंतर्गत आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 8:30 पर सुर्खियों में, 8:45 पर समाचार संध्या और न्यूज एट 9:00।

9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय युवा पत्रिका, रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, हिंदी में समाचार 11 बजे और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। ये थी आज रात तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

श्रोताओं, जिंदगी में शाम का महत्व केवल एक पहर का नहीं, बल्कि ये दिन की भाग दौड़ के बाद ठहराव, आत्म मूल्यांकन और परिवार के साथ जुड़ने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। दिन भर के काम के बाद शाम का समय मन को शांत करने और तरोताजा होने का मौका देता है। जिंदगी सुख दुख, उम्मीद और चुनौतियों का एक खूबसूरत मिश्रण है। धूप छांव की तरह यह पल पल बदलती है और हमें हर अनुभव से कुछ नया सिखाती है। जिंदगी के इन्हीं रंगों को गीतों में भी बहुत खूबसूरती से पिरोया गया है। स्वागत है आप सभी का सांझ सरगम में। मैं हूं मीनाक्षी।

दिल तो पागल है, इस फिल्म का आप गाना सुन रहे थे लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में। उत्तम सिंह का संगीत था और शब्द रचना थी आनंद बख्शी की। अगला गाना है कहो ना प्यार है, फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं। राजेश रोशन का संगीत, इब्राहिम अश्क के बोल।

आप सुन रहे हैं सांझ सरगम। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं साथिया फिल्म से सोनू निगम की आवाज़ में। ए आर रहमान का संगीत है, बोल हैं गुलजार के।

0: सांझ सरगम में आज इतना ही। कार्यक्रम से मीनाक्षी को दीजिए विदा, नमस्कार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार

0: पहली जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने आज नगड़ी स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था, रखरखाव और तकनीकी प्रबंधन की स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के खूंटपानी प्रखंड मुख्यालय से आज महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो नामक एक जागरूकता रथ को रवाना किया गया। जिले के उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार ने इसे हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि यह जागरूकता रथ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर नुक्कड़ नाटक, प्रचार सामग्री और उद्घोषणाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगा। पलामू जिले से पुलिस ने बच्चे के गले से सोने का लॉकेट काटने वाले तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस उपाधीक्षक राजेश यादव ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि इन अपराधियों ने पिछले दिनों एक मोटरसाइकिल पर बैठी बच्ची के गले से सोने का लॉकेट काट लिया था। इस दौरान ब्लेड लगने से बच्ची जख्मी भी हो गई थी। साहिबगंज जिले के बोरियो में हुए एक सड़क हादसे में आज दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर होने से यह हादसा हुआ। एक मृतक की पहचान राधानगर थाना क्षेत्र के निवासी के रूप में हुई है, जो गुड्डा जिला पुलिस बल में पदस्थापित थे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे मुख्य समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। 5:02 हुए हैं और अब वक्त हुआ है युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी का। आज कार्यक्रम में आपके साथ हैं ओंकार और उदय।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिविटी से भरे होंगे। और आज के इस आधे घंटे के सफ़र में मैं हूं आप सबों का दोस्त उदय,
1: और मैं हूं आप सबका दोस्त ओमकार।
0: आप सभी को हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम लेकर हाजिर हैं आप सबों के लिए ढेर सारी जानकारियाँ और साथ ही मनोरंजन के लिए प्यारे प्यारे गीत भी। तो बिना देर किए हम अपने कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं।
1: दोस्तों, आज 30 मई है। आज का दिन अपने आप में ऐतिहासिक और ख़ास है, क्योंकि दोस्तों आज है गोवा स्टेटहुड डे। आज ही के दिन 1987 को गोवा हमारे भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिला था।
0: भारत को 15 अगस्त 1947 के ब्रिटिश शासन से आज़ादी तो मिली थी, लेकिन इसके बाद भी गोवा पर पुर्तगालियों का औपनिवेशिक शासन जारी रहा।
1: सही कहा उदय, लगभग 450 वर्षों तक पुर्तगालियों के अधीन रहने के बाद गोवा के लोगों और भारत सरकार के कड़े संघर्षों के परिणाम स्वरूप 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगाली दस्ता से मुक्त कराया गया।
0: दोस्तों, गोवा अपनी अनूठी संस्कृति, समृद्धि इतिहास और आर्थिक समृद्धि के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है।
1: ये सिर्फ अपने बार्स और कैसिनोज के लिए ही नहीं जाने जाते, बल्कि अपने खूबसूरत रेतीले तटों, ऐतिहासिक मंदिरों और जीवंत नाइट स्टाइल के कारण दुनिया के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक भी बन चुके हैं।
0: दोस्तों, आज का दिन 30 मई गोवा स्थापना दिवस हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता कितनी मूल्यवान है।
1: 30 मई का यह ऐतिहासिक दिन दोस्तों हमें गोवा के गौरवशाली इतिहास को याद करने और इसके उज्जवल भविष्य के संकल्प को दोहराने का एक ऐतिहासिक अवसर देता है। तो दोस्तों, बातें तो और भी करनी थी, लेकिन अब लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के

0: फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। उदय, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि समोसे में क्या होता है?
5: आलू।
4: दोस्तों, गोवा स्टेटहुड डे के साथ साथ आज इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो भी है, जो 30 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है।
5: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2023 में पेरू देश के प्रस्ताव और खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ के समर्थन ने 30 मई को इस दिन के लिए घोषित किया।
4: इससे पहले वर्ष 2008 को इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो के रूप में भी मनाया जा चुका है।
5: 30 मई की तारीख इसलिए चुनी गई दोस्तों क्योंकि यह पेरू के राष्ट्रीय आलू दिवस के साथ मेल खाती है, जहां लगभग 8000 साल पहले आलू की उत्पत्ति हुई थी।
4: दोस्तों, आलू चावल और गेहूं के बाद दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली मुख्य फसल है। यह कम लागत और कम पानी में भी आसानी से उग जाता है, जिससे यह खाद्य संकट से निपटने में स्टेपल फूड के रूप में हमारी मदद करता है।
5: आलू में विटामिन सी, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर जैसे आवश्यक पोषक तत्व मात्रा में पाए जाते हैं, जो कुपोषण से लड़ने में मदद करते हैं।
4: दोस्तों, भारत के संदर्भ में यह दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत दुनिया में आलू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
5: अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस में हमें याद दिलाता है कि यह एक साधारण सी दिखने वाली जमीन के अंदर उगने वाली यह फसल दुनिया की भूख मिटाने में कितनी सक्षम है।
4: जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जहां पारंपरिक सीजनल फसलों पर संकट मंडरा रहा होता है, वहीं आलू एक टिकाऊ और मजबूत विकल्प बनकर उभरता है।
5: हमें आलू के सतत उत्पादन, इसके संरक्षण और किसानों के बेहतर तकनीक प्रदान करने की दिशा में मिलकर कदम उठाना चाहिए ताकि भविष्य को सुरक्षित और पोषित किया जा सके।
4: दोस्तों, बातें तो और भी करनी थी, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि आज गोवा स्टेट फूड डे है, आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं गोवा से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स पर। दोस्तों गोवा के तांबड़ी सुरला में स्थित कदम श्री महादेव मंदिर राज्य का सबसे प्राचीन और एकमात्र जीवित ऐतिहासिक मंदिर है।
1: इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में लगभग 12 से 13वीं सदी के दौरान कदम राजवंश के शासनकाल में हुआ था।
0: दोस्तों कदम श्री महादेव मंदिर अपनी विशिष्ट कदम यादव वास्तुकला शैली के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें हेसला और चालुक्य शैलियों का प्रभाव भी दिखाई देता है।
1: इसके साथ ही दोस्तों गोवा एशिया का नेवल एशियन म्यूजियम पूरे एशिया में अपनी तरह का पहला और इकलौता संग्रहालय है।
0: वहीं दोस्तों अगर हम बात करें वन्य जीवन की तो यहाँ एक अनूठा प्राणी पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, गौर या इंडियन बाइसन जिसे हम कहते हैं, यह दुनिया का सबसे बड़ा मवेशी जीव है जो देखने में बेहद विशालकाय और शक्तिशाली होता है। यह गोवा का आधिकारिक स्टेट एनिमल भी है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स पर। रशिया के वैज्ञानिकों ने इबोला वायरस के खतरनाक बुंडीब्यूगो स्ट्रेन से सुरक्षा के लिए एक नई वैक्सीन विकसित की है।
1: भव्य स्कीम के तहत केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2026 से 27 से लेकर 2031 से 32 तक छः वर्षों में देश भर में 100 औद्योगिक पार्क विकसित करना है जो प्लग एंड प्ले बुनियादी ढांचे पर आधारित होंगे। साथ ही दोस्तों अब अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं इतिहास में आज का दिन के बारे में। इतिहास में 30 मई का दिन कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। यह दिन हिंदी पत्रकारिता के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि 1826 में इसी दिन पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने देश का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड शुरू किया था।
0: दोस्तों 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसके बाद यह भारत का 25वां राज्य बना।
1: 30 मई 1913 को लंदन में बालकन शांति संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। दोस्तों बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आइए उससे पहले लेते हैं एक और प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: एक बार फिर से कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। भारत विश्व का सबसे बड़ा और सबसे जीवंत लोकतंत्र है, जहां विभिन्न संस्कृतियां, भाषाएं और धर्म एक साथ मिलकर लोकतांत्रिक मूल्यों को समृद्ध करते हैं।
1: भारत में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर वोट देने का सम्मान अधिकार प्राप्त है।
0: निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है।
1: भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को सम्मान, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
0: कानून के शासन की रक्षा करने और भारतीय न्यायालय का पूरी तरह से स्वतंत्र है।
1: दोस्तों, हम युवा हैं, हमारी रफ्तार तेज है, इसलिए हमें हमेशा सड़क पर चलते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि सड़क सुरक्षा के नियमों का हमेशा पालन करें। जब भी बाइक से चलें तो हेलमेट का उपयोग ज़रूर करें। चार पहिया वाहन से अगर सफ़र कर रहे हैं तो सीट बेल्ट का यूज़ ज़रूर करें।
0: सही कहा।
1: साथ ही सड़क पर चल रहे जीव जंतु या बुजुर्गों का भी हमेशा ख्याल रखें और लाल बत्ती होने पर रुक जाएं, हरी बत्ती होने पर ही रोड क्रॉस करें। दोस्तों, इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है आप सबों से विदा लेने का, तो अपने दोस्त उदय
0: और ओमकार
1: को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार, नमस्कार।

आप सुन रहे थे युवाणी, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। और आइए अब सुनते हैं हमारा औद्योगिक प्रसारण श्रमिक लोक। आज कार्यक्रम में आपके साथ हैं मीनाक्षी शर्मा और आशीष कश्यप।

0: जो दुख में भी मुस्कुराना सिखा गए वो गुरु अर्जुन देव कहलाए। त्याग, धैर्य, सेवा, धर्म, मेहनत और मानवता का मार्ग दिखाने वाले सिखों के पांचवें गुरु को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम में इस समय हमसे जुड़े सभी सुनने वालों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
1: जी हाँ, ये है आपका अपना कार्यक्रम श्रमिक लोग और मैं आपका दोस्त आशीष इस समय आपके साथ हूँ। नमस्कार श्रमिक साथियों।
0: लो, जिसने कार्यक्रम की शुरुआत की उसे ही भूल गया आशीष। क्यों श्रमिक साथियों, मैं आपके दोस्त मीनाक्षी भी आप ही के साथ हूँ और कहती हूँ स्नेहिल सा नमस्कार। चलो आशीष, अब इस कार्यक्रम की डगर पर साथ मिलकर आगे चलते हैं।
1: बिल्कुल मीनाक्षी। श्रमिक साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि गुरु अर्जुन देव जी ने सिख धर्म को संगठित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और पता है मीनाक्षी, सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल हरमंदर साहब, जिसे हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण कार्य पूरा करवाया।
0: बिल्कुल।
1: और आज हर दिन हजारों श्रद्धालु वहां मत्था टेकने जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आशीष तुमने। श्रमिक साथियों, गुरु अर्जुन देव जी ने हमें बताया कि हर धर्म हमें जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करता है। हमें अपने धर्म की आस्था के साथ मानव सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए। सिख धर्म को उनकी सबसे बड़ी देन है आदि ग्रंथ का संकलन, जिसे बाद में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना गया।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और सन 1606 में उन्होंने धर्म और
0: सत्य की
1: रक्षा के लिए बलिदान दिया, इसलिए उन्हें सिख इतिहास में प्रथम शहीद गुरु के रूप में भी जाना जाता है।
0: बिल्कुल।
1: गुरु अर्जुन देव जी का जीवन हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
0: बिल्कुल। और श्रमिक साथियों, यही सच का रास्ता हमें जीवन में सफलता देता है। मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के साथ आगे बढ़िए, फिर देखिए खुशहाली कैसे आपके कदम चूमती है।
1: और इस खुशहाली के नाम पर ही आइए आनंद लेते हैं एक प्यारे से गीत का।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: मीनाक्षी, आज 30 मई है तो पूरे वातावरण में भारतीय सेना की एक कामयाबी की कहानी गुंज रही है।
4: अच्छा, वो क्या?
3: समुद्र की लहरों संग आजादी का संदेश आया। ऑपरेशन विजय ने गोवा का स्वाभिमान दिलाया।
4: वाह, क्या बात है। और अब मेरी देखा देखी तुम भी कविता कहने लगे क्यों? भाई, बहुत अच्छी बात तुमने कही। ऑपरेशन विजय भारतीय जाबाज सेना की एक और कामयाबी की कहानी कहता है। बिल्कुल सही तुमने कहा। आप तो जानते ही हैं श्रमिक साथियों, गोवा पर वर्षों तक पुर्तगालियों ने अपना अधिकार जमा रखा था
3: और अपने अलग अस्तित्व के लिए, अपनी आजादी के लिए गोवा लंबे संघर्ष का भी गवाह बना। दिसंबर 1961 में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय अभियान चलाया गया था, जिसने गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया। 19 दिसंबर 1961 को गोवा आजाद हुआ और बाद में भारत का हिस्सा बना।
4: क्या बात है, लगता है आज गोवा के पूरे इतिहास, भूगोल की जानकारी समेट कर आप यहाँ पहुंचे आशीष। भाई, 30 मई 1987 को यह ऐतिहासिक दिन था जब गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला।
3: और आज गोवा की इन्हीं खुशियों के उत्सव का दिन है जब गोवा वासी अपने राज्य का स्थापना दिवस मना रहे हैं।
4: बिल्कुल,
3: इस अवसर पर हम उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं।
4: बिल्कुल,
3: और मौका मिला तो गोवा घूमने का भी प्लान बनाते हैं, क्यों मना चाहिए?
4: बिल्कुल, मेरा भी यही प्लान है, हम जरूर प्लान बनाएंगे। लेकिन इस समय आशीष, मैं अपने तुम्हारे स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की बात कर रही हूं।
3: अरे क्यों, आपको क्या मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है? इतना अनफिट तो शायद नहीं हूँ मैं।
4: अरे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही आशीष। भाई, स्वास्थ्य तो सर्वोत्तम धन है ना, जान है तो जहान है, ये कहा भी जाता है। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मुझे लगता है योग बेहद जरूरी है।
3: जी हाँ श्रमिक साथियों, योग हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है।
4: इसीलिए आज हम अपने श्रमिक साथियों की मुलाकात योग शिक्षिका कार्तिका जी से करवा रहे हैं। आशीष, आप इनसे बातचीत कीजिए। तो
5: साथियों, योगा एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा के संतुलन और एकता पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि भी होता है। योग का एक और अर्थ है जोड़ना या एकता स्थापित करना। योग बनाए निरोग, इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। और आज हमारे साथ हैं योग विशेषज्ञ कार्तिका। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
6: आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए, और सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार।
5: तो कार्तिका जी, योगा के अपने जर्नी के बारे में हमें बताएं।
6: मेरी योगा जर्नी एक साधारण जिज्ञासा से शुरू हुई थी जो धीरे धीरे मुझे यहाँ तक ले आई। शुरुआत में योगा मेरे लिए केवल एक एक्सरसाइज था, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस गहरा होता गया, मैंने महसूस किया कि योगा केवल बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने का तरीका नहीं है, या तो लाइफ को समझने और बैलेंस करने का एक कंप्लीट प्रोसेस है।
5: और हम जानना चाहेंगे कि कार्तिका, क्या आपने योगा में शिक्षा ग्रहण की है?
6: जी, मैंने योगा में शिक्षा ग्रहण की है। मैंने योगा में ग्रेजुएशन किया है और मैं योगा की पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन में स्टार्ट किया, तो मुझे योगा के क्लासिकल बुक्स को भी पढ़ने का मौका मिला और मेडिटेशन की गहराइयों को भी समझने का अवसर मिला।
5: अच्छा, तो चीजों को पढ़ा। हाँ, बताइए क्या बताना चाह रहे हैं।
6: मैं पिछले 5 वर्षों से योगा टीचर के रूप में लोगों को योगा सिखा रही हूँ।
5: अच्छा अच्छा, तो ये आपका एक लंबा करियर रहा। अर्दिका जी, आपने योगा शिक्षिका के रूप में ही अपना करियर चुना, कोई खास वजह?
6: ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं जहाँ भी गई हूँ मुझसे अधिकतर ये सवाल पूछे गए हैं। मैंने योगा टीचर के रूप में अपना करियर इसलिए चुना क्योंकि योगा ने मेरे लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस किए। जब मैंने योगा की पढ़ाई शुरू की थी तब मुझे खुद के अंदर एक ऐसी पीस और स्टेबिलिटी का एक्सपीरियंस हुआ जिसे पहले

0: मैंने कभी महसूस नहीं किया था। वो एक्सपीरियंस इतना पॉजिटिव और इंस्पायरिंग था कि मैंने तय किया कि मैं इस नॉलेज और पीस को दूसरों के साथ भी बांटना चाहूंगी।
1: और जैसा आप बता रहे हैं कि आपके जीवन में काफी कुछ बदलाव आए और
0: जी
1: काफी पीस हुआ, आपको स्ट्रेंथ मिला, तो मैं और हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि वो क्या-क्या बदलाव आपके जीवन में योगा के द्वारा आया है।
0: योगा ने न केवल मुझे मेंटली स्ट्रांग बनाया, बल्कि मुझे यह भी सिखाया कि हर सिचुएशन में बैलेंस कैसे रहना है। और एक तो टीचर के रूप में जब मैं देखती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स योगा के माध्यम से फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से बेहतर महसूस करते हैं, तो वो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। इस कैरियर को चुनना मेरे लिए सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि एक सेवा भी है।
1: वाह, किस प्रकार की योगा का प्रशिक्षण आपके द्वारा दिया जाता है?
0: मेरे द्वारा दी जाने वाली योगा ट्रेनिंग डिफरेंट लेवल्स और आवश्यकताओं के अनुसार तैयार की जाती है। मैं मेनली हठ योगा, विन्यास योगा और प्राणायाम पर केंद्रित प्रैक्टिस करवाती हूँ। साथ ही मैं मेडिटेशन और स्ट्रेस रिलीफ योग सेशंस भी कराती हूँ, जो आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में मेंटल पीस पाने में बहुत ही हेल्पफुल होती है।
1: तो कृतिका जी, आप योगा किन लोगों को सिखाते हैं? कोई खास वर्ग है या जो भी चाहे आपसे सीख सकते हैं?
0: मेरी योगा क्लासेस सभी एजेस और योगा के अनुभव स्तर के लिए उपयुक्त होती है, चाहे आप शुरुआती हो या फिर रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले साधक। मैं हर स्टूडेंट की जरूरत को समझकर व्यक्तिगत मार्गदर्शन देने की कोशिश करती हूँ, ताकि वे योगा से जुड़ाव महसूस करें और अपनी बॉडी, मन और आत्मा के बीच बैलेंस बना सके। साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में योगा सिखाती हूँ, ताकि हर कोई कभी कहीं से भी इस साधना से जुड़ सके।
1: मुझे लगता है कि कोरोना के बाद ये ऑनलाइन योगा, कोरोना के दौरान और बाद में, काफी लोग इसमें अंतर आया, आप इसको कैसे महसूस करती हैं?
0: हाँ, कोरोना के बाद पहले तो ऑफलाइन ही एक साधन था, लेकिन कोरोना के बाद लोगों ने सोचा कि ऑनलाइन की तरफ भी बढ़ा जा सकता है, तो फिर योगा क्लासेस मैंने भी ऑनलाइन देनी शुरू कर दी।
1: अगर कोई व्यक्ति योगा शुरुआत करना चाहे तो उसे कौन-कौन से आसन से शुरुआत करना चाहिए या उसे कैसे शुरुआत करना चाहिए?
0: अगर कोई व्यक्ति योगा की शुरुआत करना चाहता है, तो पहले तो कुछ इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि वो सही तरीके से योगा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सके। योगा शुरू करने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आप योगा क्यों करना चाहते हैं। जैसे कि आपको स्ट्रेस कम करना हो, या बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना हो, या फिर वेट कम करना हो, और कुछ लोग मन की शांति के लिए भी करना चाहते हैं।
1: जी,
0: योगा सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि यह श्वास, ध्यान और लाइफस्टाइल का बैलेंस है। आप योगा की शुरुआत यूट्यूब या फिर बुक्स और अब तो योगा एप्स से भी आप कर सकते हैं। शुरुआत में इजी आसनों के साथ करना चाहिए, जैसे ताड़ासन, वज्रासन, भुजंगासन और श्वासन आदि। फिर आप उसमें प्राणायाम भी जोड़ सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, डीप ब्रीदिंग, ये सब।
1: अच्छा, ये तो बहुत सही बात कहा आपने कि प्राणायाम जो है काफी लीनियर स्तर आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो
0: जी हाँ,
1: योगा का कोई निश्चित टाइम है या कभी भी इसे किया जा सकता है?
0: देखा जाए तो जब आप शुरुआत करें योगा की, तो रेगुलरिटी तो जरूरी बनाए रखिए, तभी आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। हर दिन एक निश्चित टाइम फिक्स करें, से तो सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है, और शुरुआत में 5 से 10 मिनट करें, फिर उस टाइमिंग को आप बढ़ा सकते हैं। और अगर संभव हो तो फिर किसी योगा टीचर से गाइडलाइंस ले, या ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात,
1: जी
0: अगर कोई पुरानी चोट है आपको, या फिर कोई हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो योगा शुरू करने से पहले डॉक्टर या फिर योग एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए।
1: जी तो जैसा बहुत ये सुना जाता है कि योगा खाकर नहीं करना चाहिए, योगा का सबसे अच्छा रिजल्ट आपको तब मिलता है जब आप खाली पेट।
0: आप
1: सही
0: मॉर्निंग
1: है
0: टाइम कर सकते हैं,
1: जी।
0: इसलिए सुबह का टाइम सबसे बेस्ट माना जाता है।
1: तो योगा से किसी व्यक्ति के जीवन में क्या-क्या बदलाव आ सकते हैं?
0: योगा से किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल चेंजेस की, तो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, बॉडी की अकड़ भी कम हो जाती है और बॉडी पार्ट्स भी मजबूत होते हैं, और खास तौर पे बात करें हम तो रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होती है। इसी तरह हम देखें तो मेंटली भी काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे स्ट्रेसेस में रिलीफ भी मिलती है और कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ती है और आप पॉजिटिविटी भी फील करते हो। और जब आप योगा कंटिन्यू रखते हैं तो कुछ टाइम बाद स्पिरिचुअलिटी और इनर ग्रोथ भी महसूस कर सकते हैं।
1: बहुत सही कहा आपने। तो कार्तिका जी, जैसा कि आज हमारा विषय है योग बनाए निरोग, इस कथन पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: योग बनाए निरोग एक बेहद सटीक कथन है, क्योंकि योग केवल बीमारी का इलाज नहीं है बल्कि बीमारी से बचाव का विज्ञान है। इस पर मैं यही कहना चाहूंगी कि योग बनाए निरोग, क्योंकि योगा शरीर को स्वस्थ रखता है, मन को भी शांत रखता है और आत्मा को मजबूत बनाता है। योग दवा नहीं, पर दवा से कहीं ज्यादा असरदार साधन है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ लोग दवाओं पर निर्भर होते जा रहे हैं, वहाँ योग एक ऐसा नेचुरल उपाय है जो हमें स्वस्थ जीवन की ओर लौटने का रास्ता दिखाता है।
1: कार्तिका जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए हमारे और हमारे श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सचमुच कार्तिका जी ने सही कहा आशीष, कि योग भगाए रोग। इसलिए जितना भी समय मिले, सुबह शाम जैसा आपके प्रशिक्षक बताएं, कम से कम आधा घंटा अपने लिए जरूर निकालिए। अपने शरीर से, अपने आप से आप प्यार कीजिए और देखिए फिर कैसे आपकी जिंदगी आगे बढ़ती है।
3: बिल्कुल साथियों, अब हम बात करेंगे एक ऐसी पहल की जो देश के करोड़ों असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं से जुड़ने का प्रभावी माध्यम बन रही है।
2: अच्छा,
3: इस पहल का नाम है ई श्रम पोर्टल।
2: बिल्कुल, मैंने भी सुना है और सही कहा तुमने आशीष। भारत की अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है। जो वो काम करते हैं, जैसे निर्माण कार्य हो, कृषि काम हो, घरेलू काम हो, रेड़ी पटरी पर बैठने वाले लोग हो, मोची हो, रिक्शा चालक हो, प्रवासी मजदूर हो, और बहुत तरह के लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में आते हैं और इनकी भूमिका बहुत ज्यादा होती है।
3: बिल्कुल सही कहा आपने मनाची। और साथियों, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना और उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है।
2: बिल्कुल, हम आपको ये भी बता दें श्रमिक साथियों कि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले श्रमिकों को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAAN नंबर आपको मिल जाता है। ये नंबर पूरे देश में आपकी एक अलग पहचान होती है कि आप एक असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है। जैसे हमारा एक आधार नंबर है, वो हमारी पहचान है, ठीक इसी तरह से असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए भी एक पहचान का नंबर मिल जाता है, UAN नंबर।
3: बिल्कुल सही कहा। और ही श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद सरल है। आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी के माध्यम से कोई भी पात्र असंगठित श्रमिक अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
2: बिल्कुल,
3: यह सुविधा कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC के माध्यम से भी उपलब्ध है।
2: हाँ, CSC जिसे हम प्रज्ञा केंद्र भी कहते हैं, जो कई जगह हमें देखने को मिलते हैं और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम किए जाते हैं। साथियों, ई श्रम पोर्टल केवल एक पंजीकरण व्यवस्था नहीं बल्कि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, बीमा सुविधाओं और अन्य सरकारी लाभों से जोड़ने का एक बेहद सशक्त माध्यम है। श्रमिकों के जीवन में आर्थिक सुरक्षा और सम्मान की भावना इससे बढ़ जाती है।
3: श्रमिक साथियों, यदि आपके आसपास कोई असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, तो उन्हें ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित करें।
2: बिल्कुल,
3: यह कदम उसके बेहतर और सुरक्षित भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
2: बिल्कुल, और आशीष मुझे लगता है कई बार क्या होता है ना कि श्रमिक इसलिए भी नहीं करवाते पंजीकरण, उनको लगता है सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, वो कंप्यूटर नहीं कर सकते हैं, वो अपना खुद अपलोड नहीं कर सकते जो जानकारी मांगी गई है, और इसी झिझक में बहुत सारे हमारे श्रमिक साथी इस काम को नहीं कर रहे हैं और इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जा रहे हैं। तो ऐसे श्रमिकों को आप क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि आप जो है जानकारी के अभाव में, ऐसा नहीं है कि आपका पंजीकरण छूट सकता है।
2: बिल्कुल,
3: आप जाएं नजदीक प्रज्ञा केंद्र में, जाएं अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर दें।
2: हाँ,
3: आप बोलें कि मुझे पंजीकरण कराना है, वो आपकी सहायता जरूर करेंगे।
2: बिल्कुल, वो शायद बहुत छोटी सी सहायता राशि लेते हैं, 10 रुपए 20 रुपए की, लेकिन आपका बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो श्रमिक साथियों, आपको जागरूक रहने की बहुत जरूरत है। तो आइए लोगों को ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए हम सब मिलकर जागरूक करते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी पहल है जो श्रमिकों का, उनके अधिकारों का, सुरक्षा और सरकारी योजनाओं से जुड़कर उन्हें आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में आगे बढ़ने का एक बहुत

0: अच्छा अवसर प्रदान करती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले विषय की ओर, जो शहरी गरीबों के जीवन में आशा, आत्मनिर्भरता और सम्मान का नया अध्याय लिख रही है।
0: अच्छा, ये क्या है?
1: और ये संदेश दे रही है, हर हाथ को काम, हर घर को सम्मान।
0: बिल्कुल, यानी ये है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जिसे हम DNULM के नाम से भी जानते हैं। श्रमिक साथियों, कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को अवसर मिले ना, तो फिर वो अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर, मुझे लगता है आशीष, और मैंने देखा भी है कि वो आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ान भर सकता है। फिर उसके बाद उसे लौट कर देखने की जरूरत नहीं होती, पर यही अवसर प्रदान करता है उन्हें DNULM, है ना, जो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, जो कि आपको बहुत सारे अवसर प्रदान कर रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा। और श्रमिक साथियों, इस मिशन का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को रोजगार, स्वरोजगार, कौशल विकास और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
0: बिल्कुल। तो श्रमिक साथियों, इस योजना के तहत अनेक महिलाएं सिलाई का प्रशिक्षण ले रही हैं, और पता है मैंने देखा है आशीष कि वो छोटा सा एक मशीन से शुरुआत करती हैं, उसके साथ वो कई महिलाओं को जोड़ती हैं, फिर धीरे धीरे 10-12 लोगों का एक समूह बन जाता है, और उनका जो घरेलू कुटीर उद्योग होता है वो धीरे धीरे और बड़ा होने लगता है, और महिलाएं अपनी आमदनी अच्छे से कमा रही है, अपने परिवार को सपोर्ट कर रही है, अपना आत्मसम्मान और स्वाभिमान से अपनी जिंदगी जी रही है,
1: वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ जाती हैं महिलाएं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और फिर वो बड़े स्तर पे भी अपना कार्य कर सकती हैं।
0: हाँ।
1: ऐसी हजारों कहानियां देश भर में लिखी जा रही
0: है। और ये पूरी, ये जो कहानियां है ना, ये पूरी सफलता की कहानी है, खुशियों की कहानी है श्रमिक साथियों, और ये खुशियां हमें दे रहा है DNULM।
1: मिशन के अंतर्गत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे रोजगार प्राप्त कर सकें या अपना उद्यम शुरू कर सकें।
0: बिल्कुल। और अब तो बैंक भी बहुत सारी सुविधाएं देती हैं कि अगर आप छोटा सा काम करना चाहते हैं, अपना स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए लोन ले सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। सरकार की योजनाएं हैं आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन है, आप उसकी सहायता ले सकते हैं। ये तो साथियों, जब हर हाथ को काम मिलेगा तभी हर घर में खुशहाली आएगी और तभी हर घर को सम्मान भी मिलेगा। आइए हम सभी इस मिशन की जानकारी अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बनने का एक बहुत अच्छा सा अवसर प्रदान करें। क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा। और क्या सिर्फ बातें ही होंगी मीनाक्षी?
0: नहीं, नहीं, मैं समझ गई आशीष, जब आप मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे, मैं उसी समझ गई कि अब कोई फरमाइश आने वाली है, क्योंकि भाई शाम का समय है, अपने साथियों का साथ है, आवाज की दुनिया का साथ है, तो फिर गीत संगीत तो होना ही चाहिए ना। तो मैं अब मीनाक्षी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्यारा सा गाना बजा दीजिए।

0: चलो आशीष, थैंक यू बहुत प्यारा सा गाना बजाने के लिए। हमने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन अब घड़ी कुछ इशारा कर रही है और कह रही है कि हमारी और अपने श्रमिक साथियों की आज की मुलाकात का वक्त यहीं खत्म हो रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, तो इजाजत लेते हैं हम अपने साथियों से।
0: बिल्कुल, तो दीजिए अपनी दोस्त मीनाक्षी
1: और आशीष को इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे श्रमिक लोग, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। 6 बजे हैं, आइए सुनते हैं मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि राज्य के कई जिलों में भोजपुरी, मैथिली और अंगिका जैसी भाषाएं व्यापक रूप से बोली जाती हैं, जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। राज्य में नियुक्ति परीक्षाओं में चल रहे भाषा नियमावली के मसले पर मंत्री ने कहा कि इसे विवाद कहना उचित नहीं होगा, बल्कि इसमें कुछ चूक हुई है। आज धनबाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में जनजातीय भाषा बोलने वाले नहीं है, वहां उसे अनिवार्य करना तर्कसंगत नहीं है। धनबाद में आज श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से एक दिवसीय दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 20 से अधिक निजी कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए, जहां बड़ी संख्या में युवाओं ने पहुंचकर विभिन्न पदों के लिए आवेदन किया। इस दौरान कई अभ्यर्थियों का मौके पर

0: चयन किया गया और उन्हें ऑफर लेटर भी प्रदान किए गए। रांची विश्वविद्यालय के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 5 मई से आयोजित 21 दिवसीय योग शिविर का आज समापन हो गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद छात्र कल्याण संकाय के अध्यक्ष डॉ. सुदेश साहू ने योग को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का सशक्त साधन बताते हुए प्रतिभागियों को इस दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर लोहरदगा जिले में तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अवसर पर उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने जिलेवासियों से तंबाकू एवं तंबाकू जनित उत्पादों के सेवन से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो, लोहरदगा, गुमला और धनबाद समेत 11 जिलों में कल गर्जन के साथ बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से मुख्य समाचार समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे मुख्य समाचार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हमारी दुनिया। कार्यक्रम है किसान वाणी।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनैया सब किसान भाई बहन मन के कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
1: मनीष भाई भट्ट से जोहार।
0: और बताए देवे चाहिए कि ई कार्यक्रम का प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: एकदम। और देखो कृष्ण जीवन भाई कि आज कल तो बरखा पानी आवे के लायक है। तनिक दिन पहले तो मुरुग रौद और गर्मी लागत रहे और अकबक लागत रहे, का करे?
0: आज बिहाने इतना बढ़िया मौसम हो जा रहे कि और बहुत राहत मिल लग गर्मी से, है नहीं? और बात ऐसा है कि जैसे खन बरखा उरखा अगर पानी आवेल नहीं तो उके जो है से मैंने जमा करके रखब तब नहीं, फिर बाद में भी काम आवी, नहीं तो पानी पानी करत रह।
1: हाँ हाँ, है एखन अभी रौद लागत रहे तो पानी पानी करत रही, कखन पानी बरसी बरसी करत रही, वैसे पानी ले हूँ छटपटाव का।
0: हाँ, तो हमरे कहे चाहब किसान भाई बहन उनके कि जैसे बरखा कर जो पानी है उके जमा करके रखे है और उखे कहे न बरखा माने जल संचयन, है नहीं?
1: हाँ हाँ।
0: और देखो आज हमरे कर झारखंड कर धरती ऐसा है कि कहूँ गढ़ा है तो कहूँ डिपा है, कहूँ पहाड़ है, कहूँ पठार है। तो जेकर चलते जे पानी आवे ले तो बुहाई के सरसराए के निकल जाए ले, तो नतीजा ये हो कि गर्मी कर दिन आते आते हमरे के पानी का किल्लत झेले के पड़े ले, से खातिर बरखा कर पानी के बेकार बहे देवे के नखे के रोक के रखे के और इकर खातिर कुछ उपाय करे।
1: एकदम। और उपाय है कि हमरे मन के छोट छोट जे इंदिरा मन है और जे डोभा मन है, उ सबके जीवित रखे के और उमन के बनाए के और
0: हाँ बनाए के रखे के। और जैसे घर में भी जैसे माने छाइन में जो पानी गिरे नहीं तो वो कम नहीं गिरे ला।
1: हाँ हाँ।
0: तो उखो जो है ना एगो जैसे गढ़ा कोड़ के राख दिली अंगना। हाँ। में और पानी के जमा करके रखब नहीं तो वो टंकी में तो पानी भरिए जाए और आस पास कर भुइयाँ कर भी जल स्तर ऊपर आवी।
1: एकदम। और बरखा जल कर संचयन जो है बहुत जरूरी है, काले कि उकरे से हमरे कर जो धरती

0: डाल्टनगंज का अधिकतम 35 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस, बोकारो का अधिकतम 31 न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस, धनबाद का 32 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। वही तरह गिरिडीह का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहला।
1: एकदम तो ये तो रहलक मौसम कर हाल। और देखो भाई बहन मन, पानी बरखा कर बात हुआ थे तो जे एखन हमरे मन फल फूल सब्जी मन हो लगाए के लाएगी, तो सब्जी मन में जे लतरदार फसल होएला उकर में का का रोग होएला और उकर हमरे कैसे उकर रोग कर प्रबंधन कर सकेला, इकर बारे में हमरे एगो जानकारी देवत ही बतात हैं डॉक्टर लहम दोरजी और इनकर से गोठियाई हैं मनोज कुमार।
0: आओ सुनी लो तो।
2: किसानों ने कार्यक्रम आप सभी का स्वागत है, नमस्कार। आज हम जानेंगे लतरदार फसलों के प्रमुख रोग और उनका प्रबंधन के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लाम दोरजी, कन्या वैज्ञानिक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची। दोरजी आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
3: नमस्कार और जोहार।
2: लतरदार फसल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लतरदार फसल में कौन कौन से आते हैं?
3: जी, लतरदार फसल की अगर हम बात करें, जिसे हम कुकुरबिट्स भी कहते हैं, इनमें अनेक प्रकार के फसलें आप खरीफ सीजन पे उगाते हैं, जैसे कि नेनुआ, तोराई, लौकी, करेला, परवल, कद्दू, खीरा और कुछ फल जैसे कि तरबूजा, खरबूजा। और ये मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये सब सब्जियाँ और फल है, ये किसानों की आमदनी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसी के साथ ही साथ हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए ये काफ़ी लाभदायक है हमारे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि ये पोषक तत्व से भरे होते हैं। जैसे कि आप देखिए, कैलोरी इसमें केवल 15 किलो कैलोरी ही मिलेगा, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में 6.5 ग्राम तक आपको मिलेगा। डाइट्री फाइबर भी काफ़ी अच्छे मात्रा में मिलते हैं, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन वालों को काफ़ी मदद मिलता है डाइजेशन में। और वाइटामिंस की बात करें तो भरपूर ए सी के है इस पर। मिनरल्स की बात करें तो पोटेशियम, जो कि ब्लड प्रेशर में आपको काफ़ी लाभदायक है। उसके साथ में और एक बात जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे, कुकुरबिटासिन करके एक कंपाउंड मिलता है, जिस जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी डायबिटिक, उसके साथ ही साथ एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है।
2: तो ये जो फसल हम कब कब लगा सकते हैं, किस कोई खास मौसम में, किस सालों पर लगा सकते हैं?
3: जी देखिए, ये फसल आप हमारे झारखंड एरिया में तो किसान भाइयों और बहनों लोग ज़ैद सीज़न में लगाते हैं, जो कि आप समर कहते हैं, फरवरी मार्च में उन लोग लगाते हैं। और अभी जो आने वाले बारिश के मौसम में, जो हम खरीफ सीज़न कहते हैं, उस जून जुलाई महीने में भी किसान भाई और बहन लोग इस फसल को, इन फसलों को लगाएंगे,
2: लगा सकते हैं। तो लहम दौरजी एक चीज़ और चीज़ बताइए कि हम लोग तो सब फसल लगाते हैं पर बहुत सारे फसलों में रोग लग जाते हैं, ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से रोग लगते हैं और पहचान क्या है?
3: जी देखिए, इसमें जो काफ़ी जो महत्वपूर्ण रोग हमारे झारखंड और रांची एरिया में जो देखने को मिलता है, वो है डाउनी मिल्डू, पाउडरी मिल्डू और फिजारियम विल्ट, जो कि फफून से होता है। उसके साथ ही साथ बैक्टीरियल विल्ट भी काफ़ी बार हमें देखने को मिल जाता है, जो कि एक जीवाणु के कारण होता है।
2: तो पहचान कैसे करेंगे हम?
3: जी पहचान कुछ इस तरह से है, अगर आप डाउनी मिल्डू की बात करें तो शुरुआती समय पर पत्तों की ऊपरी सतह पर आपको छोटे छोटे पीले कोनिये धब्बे दिखेंगे और पत्तों की निचली सतह पर आपको सफ़ेद फफोले जैसे छाले दिखेंगे। और कुछ समय के बाद अगर मान लीजिए हवा में काफ़ी ज़्यादा नमी है, तो उस स्थिति में जो फफोले जो मैंने बताया पत्तों की निचली सतह पर, वो बैंगनी या गुसर रंग के हो जाएंगे। और इसके कारण क्या होता है कि जो कुछ समय के बाद जो छाले हैं, जो पीले पीले धब्बे हैं, वो आपस में जुड़कर पत्ते सूखने लग जाते हैं, पत्ते मरने लग जाते हैं, उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं, जिसके कारण उपज में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। पाउडरी मिल्डू को पहचानना किसान भाइयों और बहनों काफ़ी सरल है, आपको टलकम पाउडर जैसा कुछ पदार्थ पत्तों पर, तनों पर, फलों में देखने को मिल जाएगा। अगर हम फिजारियम विल्ट की बात करें तो आप देखेंगे जो पुराने पत्ते हैं वो पीले पड़ जाते हैं किनारे से, और उसके साथ ही साथ जो पूरा पौधा है वो मुरझा जाते हैं। अगर आप तनों को चीर कर देखें तो जो अंदर की वेसल्स हैं, जिसे हम वाहिकाएँ कहते हैं, वो भूरे रंग की हो जाती हैं। बैक्टीरियल विल्ट को पहचानना भी काफ़ी सरल है, दिन में वो मुरझाए हुए रहेंगे, शाम को देखेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे और कुछ समय के बाद वो पूरी तरह से पौधा जो है वो सूख जाएगा। लेकिन इसको अच्छी तरह से पहचानने के लिए इसके तनों को काटकर अगर उसमें आप निचोड़े तो सफ़ेद चूर्ण जैसा पदार्थ निकलेंगे, जो हम बैक्टीरियल ऊज कहते हैं। या फिर आप तनों को काटकर एक साफ़ पानी में भी डुबा कर रख सकते हैं, जहाँ से आपको दिखेगा कि वहाँ से बैक्टीरियल ऊज निकलते हुए। तो इससे इस तरह से आप इस बीमारियों को पहचान सकते हैं।
2: जैसे रोग कब लगता है, शुरुआत दौर में लगता है कि जब फल आते हैं तब लगता है?
3: जी रोग कुछ इस प्रकार से हैं, रोग लगने के लिए आपका जो पर्यावरण

0: कारण स्थिति है वो फेवरेबल होना चाहिए इन फफून और जीवाणु के लिए। तो जब हवा की नमी डाउनी मिल्ड्यू की बात करें तो जब हवा की जो नमी है वो 80% से ज़्यादा हो और लगातार बारिश जब आप हो और तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो तो आप समझ सकते हैं कि डाउनी मिल्ड्यू ज़रूर आपको आपके फसलों में दिखेंगे। उसके साथ ही साथ अगर आप पाउडर मिल्ड्यू की बात करें तो इतनी ज़्यादा नमी की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसे। दिन में अगर नमी कम मतलब सूखा और शाम को थोड़ी नमी हुआ तो पाउडर मिल्ड्यू का डिजीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर फिजारियम विल्ट की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि जो ये फिजारियम विल्ट है वो पौधों की जो अवशेष है पुराने पौधों की जो अवशेष है उसमें जीवित रहते हैं और जब पानी जो मिट्टी में जो नमी ज़्यादा हो जाती है तो उस स्थिति में आपको फिजारियम विल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो मैंने बैक्टीरियल विल्ट की जो बात की वो एक कीटक है जिसका नाम है कुकुम्बर बीटल, उससे ही उसके माध्यम से ही ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से आपके खेतों में फैलता है।
1: तो जितने सारे आप जो फसल के बारे में बताए तो सारे फैल जाते हैं
0: जी जी में? ये डाउन मिल्ड्यू पाउडर मिल्ड्यू और बैक्टीरियल विल्ट काफ़ी तेज़ी से फैलेगा। लेकिन जब आप फिजारियम विल्ट की बात करें तो कुछ पौधों में आपको देखने को मिलेगा जो मुरझाना जो सिम्टम मैंने आगे बताया तो कुछ ही पौधों पर आपको देखने को मिलेगा फिजारियम विल्ट के केस में। लेकिन डाउन मिल्ड्यू पाउडर मिल्ड्यू और बैक्टीरियल विल्ट काफ़ी तेज़ी से खेतों में फैल सकता है अगर आप सही समय पर उसका प्रबंधन ना किया जाए तो।
1: जब ये कीटाणु फैल जाते हैं तो जो हम लोग को जो फसल लेना है तो फसल की जो मात्रा है हमें काफी कम मिलेगी, फसल तो कम मिलेगी
0: जी जी, उपज काफी कम हो जाएंगी जी।
1: इसका रोग जितने सारे आप मैंने बताया उसका तो प्रबंधन जरूरी है, हमको इसको रोकना जरूरी है, अगर नहीं रोकेंगे तो फिर फसल हमको नहीं मिलेगी
0: बेशक।
1: तो इसका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं
0: जी? प्रबंधन कुछ इस प्रकार से है, सभी रोगों के लिए पहली बात तो आपको खेतों में साफ सफाई रखना काफी आवश्यक है। उसके साथ ही साथ अगर आप डाउनी मिल्ड्यू की बात करें तो हवा का जो अच्छा संचार रखना खेतों में ज़रूरी। इसका मतलब ये है कि जो पौधों की ऑप्टिमम डेंसिटी आप रखें, कुछ फफूंद नाशक है जैसे कि मेटालाक्सिल जो 2 ग्राम प्रति लीटर में घोलकर आप उसका छिड़काव कर सकते हैं, क्लोरोथालोनिल जो भी वो भी 2 ग्राम प्रति लीटर में घोलकर आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। पाउडर मिल्ड्यू के लिए कुछ फफूंद नाशक है जैसे कि माइक्लोबुटानिल वो आप 0.4 ग्राम प्रति लीटर में घोलकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। और 2 नई फंगिसाइड जो कि काफ़ी प्रभावशाली है पाउडर मिल्ड्यू के अगेंस्ट में जैसे कि क्यूनोक्सीफेन एंड साइफ्लोफेनामाइड जो कि 0.25 ग्राम प्रति लीटर में घोलकर आप उसका छिड़काव कर सकते हैं और 7 से 10 दिन के बाद आप छिड़काव दोहरा सकते हैं। इससे आपका जो रोग का जो संक्रमण है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। फिजारियम विल्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रतिरोधी किस्में आप अपना सकते हैं और जैव नियंत्रण को आप अपना सकते हैं जैसे कि ट्राइकोडर्मा और सीरोमोनास। बैक्टीरियल विल्ट के लिए कोई ऐसा उपचार नहीं है तो रोकथाम ही इसका सबसे अच्छा उपचार है। लेकिन आप जो कीट है जो हमने आगे मेंशन किया कुकुम्बर बीटल उसको आप नियंत्रण में रख सकते हैं। उसके लिए आप इमिडाक्लोरप्रिट लगभग 1 ml प्रति लीटर में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। जब कीट का संख्या कम होगा खेतों में तो ये बैक्टीरियल विल्ट भी कम फैलेगा खेतों में जी।
1: दवा सिर्फ छिड़काव करना है कि जड़ में भी अलग से दे सकते हैं?
0: दवा छिड़काव करना है डाउनी मिल्ड्यू पाउडरी मिल्ड्यू और बैक्टीरियल विल्ट के केस में। लेकिन फिजारियम विल्ट के केस में अगर कुछ आप दवा देते हैं जैसे कि कार्बिंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर तो उसके केस में जो जड़ के आसपास है उसमें आपको दवा को देना होगा जिसे हम ड्रेंचिंग कहते हैं जी।
1: बहुत सारे किसान भाई मल्चिंग से खेती करते हैं, बहुत सारे ऐसे खुले खेत में करते हैं तो दोनों में रोग सामान्य लगता है कि दोनों में अलग अलग रोग लगता है?
0: देखिए अगर आप मल्चिंग करते हैं पौधों के अवशेष से तो उस स्थिति में बीमारी ज़्यादा आएगा आपके खेतों में वो तय है क्योंकि पौधों के अवशेष में जो इसका जो रेस्टिंग स्पोर्ट्स कहते हैं वो काफ़ी लंबे समय के लिए जीवित रहते हैं। जैसे अगर मैं डाउनी मिल्ड्यू की बात करूं तो उसमें ऊस्पोर काफ़ी समय के लिए पौधों के अवशेष में जीवित रहते हैं। पाउडर मिल्ड्यू की बात करूं तो उस केस में क्रिस्टोथेशियम और फिजारियम की बात करूं मैं फिजारियम विल्ट की तो उस केस में क्लेमिडोस्पोर काफ़ी लंबे समय के लिए वो जीवित रहते हैं।
1: तो अंत में हमारे किसान भाई को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे?
0: जी मैं सभी किसान और बहनों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सही समय पर इन रोगों का पहचान करें और सही प्रबंधन करें, उसी से ही आपकी उपज अच्छी होगी और बेहतर आमदनी होगी। उसी के साथ मैं कुछ किस्में आपको बताना चाहूँगा जैसे कि आप खीरा के लिए आप स्वर्णपूर्ण, स्वर्ण अगेती, स्वर्ण शीतल, पूसा संयोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नेनुआ के लिए पूसा चिकनी, पूसा प्रभा, स्वर्ण प्रभा इस्तेमाल कर सकते हैं। कद्दू के लिए आर्का बहार, पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी अपना सकते हैं। करेला के लिए अर्का हरित, प्रिया, कल्याणपुर सोना, पूसा हाइब्रिड वन अपना सकते हैं। परवल के लिए स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक अपना सकते हैं। इससे जो रोग आज हमने चर्चा किया वो काफ़ी कम होगा और आप

0: की उपज भी अच्छी होगी।
1: तो किसान भाइयों, आज आपने जाना कि लतादार फसलों के प्रमुख रोग कौन से हैं और उनका प्रबंधन हम किस तरह कर सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे डॉक्टर लाम दोरजी। दोरजी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही, दूसरे दिन फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जोहार।
2: तो भाई, जानकारी तो बड़ा नगद रहे कि लतरदार फसल मन कर जे रोग हो ऐला उकर कैसे प्रबंधन हमरे मन कर सकी लाई कर बारे में जानकारी रहे। और जानकारी देवत रहे डॉक्टर लहम दोरजी और इनकर से गोठियाई रहे मनोज कुमार।
3: तो आओ अब जानकारी कर बाद एगो गीत सुन लेवत है मेघनाथ महतोर संगी मनकर गावल।
2: चलो तब सुनीला।

0: बड़ा बढ़िया गीत रहे, है नहीं?
1: हाँ हाँ
0: अब गीत करवा दे, कुछ जानकारी भी करे चाहिए।
1: एकदम। तो आइज नवा उमर कर नवा फसल में एगो किसान रोहन महतो से करल गोइट के हमरे सुनीला, इनकर से गोठियाई हैं अरविंद मिश्रा।
0: आओ सुनी ले तो।
2: कार्यक्रम सुनवैया सब भाई बहन मन के हमर बटले बहुत बहुत जोहार। भाई बहन मन आशा करेला हाल समाचार और मन कर बहुत बढ़िया हुई। देखो रोज दिना हमरे मन नवा नवा किसान भाई मन से भेंट करवाते रहिला रोर मन कर, उमन कर अनुभव के जानिला, कानियर खेती करेना, खेती बाड़ी करके कैसन उमन कर जीविका चलेक लाई है, सारा कुछ हमरे मन जानिला। बहुत किसान मन है नी कि नवा नवा तकनीक के अपनात हैं और जैम के खेती बाड़ी कर काम के करत हैं, तो उमन से भी हमरे मन के जाने के सीखे कर मौका लागेला। तो आइज हमरे मन अपन स्टूडियो में एक ठो नौजवान किसान भाई के बुलाही, ये देखे के लिए नौजवान हैं लेकिन इनका ठीना देखब नी खेती बाड़ी कर बहुत अनुभव है। कारण है कि इनकर से चलते फूल ते हम इनकर से भेंट कर रही, इनकर खेती बाड़ी कर जे तरीका है से कि हम ठावे देख रही, तो इनके आज हमरे मन आमंत्रित कर रही, चलो इनकर से हमरे मन भेंट करीला और इनकर जे खेती बाड़ी कर तौर तरीका है से कि हमरे मन जाने कर प्रयास करब। तो सबसे पहले तो इनकर हमरे मन स्वागत करीला। भाई जोहार।
3: जोहार।
2: नाम का होला किसान भाई रोर?
3: हमर नाम रोहन कुमार महतो है के।
2: रोहन भाई कहाँ कर रहे वाला ही रो रे?
3: हमर गाँव करांजी थाना बेड़ो जिला रांची है के।
2: बहुत बढ़िया रोहन भाई, बेड़ो थाना कर और रांची जिला कर होइया ही। और देखो दियो ठाव जे है नी हमरे कर रांची जिला कर बात के कहिलो, चाहे बेड़ो ब्लॉक कर बात के कहिलो, हुआ कर किसान मन बड़ा जबरदस्त एकदम अलग अलग तरह कर खेती करेना और जैम के खेती करेना, कैसन
3: खेती? तो हुआ सब प्रकार कर खेती होवेला और खेती में हमरे इतना मतलब व्यवस्था के साथ करीला कि अपन मन तन धन सब लगाए देवीला दादा खेती में।
2: रोहन हम तो जाके देख रहे खेत में जैसन रोरे बाप और बेटा जो यूं मिल के खेती करत रहे, हमके भी बड़ा बेस लाग लग रोर मन के देख के। रोहन भाई पढ़े कहाँ तक पार ली रोरे?
3: हमर पढ़ाई लिखाई इंटर तक भे है और यह खेती गृहस्थी में फिर इंटर कर बाद उतरली और एखन जोर शोर से खेती करत थी दादा।
2: तो खेती करते करते कतना साल का रोर ठीना अनुभव भेजा है?
3: खेती देखू हमरे कर बाप पुरखा से तो करते आवत हैं, तो हमरो छोटे बेरा रही से है बेर से कोड़ा खोपा जे भी अपन बाप मने करे ना से के करते करते हमरे सीखली और एखन कर जे तकनीक के मतलब व्यवस्था है सेकर से जानकारी भी हमरे के बहुत तरह से अच्छा मिले लाएगे।
2: एकदम सही कहली। खेत रोर अपन कितना है?
3: देखू खेत तो अपन ज्यादा नखे लेकिन दूसरा मनकर खेत में भी हमरे जोर शोर से ज्यादा मात्रा में खेती लगाई ले।
2: का खेती करी ला? कैसन मने दोन खेत है कि डाण खेत है, कैसन है?
3: देखू हमरे कर उजक जे मिट्टी जे है से बहुत तो मतलब उपजाऊ मिट्टी है, उके कहे ना नगड़ा माटी। अब नगड़ा माटी में तो देखू जखन सूख जायला से बरा तो टंग टंग बुझायला लेकिन पानी तनी कुन पड़ जायला नी तो पूरा वो बालू जैसन रेत बन के बहे लागेला। सेकर में वो खेती करेले बहुत उपजाऊ मिट्टी होवेला दादा और हमरे कैसनो चीज के हुआ लगाई लनी तो बहुत सुंदर होवेला। जैसे कि गेहूं के भी अगर एक बेर बुन देली, चना के बुन देली और एक बेर छीट देली और ऊपर वाला भगवान एक आध बेर बरखा कर देलक, बारिश आ गेलक, तो हमरे खाली ऊपर में दवाई कर यूज करी ला दादा और हमरे कर फसल पूरा बहुत सुंदर उपज हो जाएला।
2: बहुत नगद बहुत बढ़िया से रोरे बता थी अपन खेती बाड़ी कर तौर तरीका के। रोहन भाई एखन कर समय में खास करके देखो, हालांकि बीच बीच में बरखा पानी आते है लेकिन गर्मा कर जे खेती होएला सेकर में पानी कर बहुत दरकार होएला, तो रोर मन गर्मा खेती में कैसे कैसे काका करी ला रेखन रोर खेत में का लागल है?
3: देखो गर्मी खेती में तो खैर पटवन कर दिक्कत होवेला और दवाई बीरो भी टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हो जाएला गर्मी कर कारण तो दवाई भी काम नहीं करेला। लेकिन मेन चीज है कि गर्मी कर पानी, पानी अगर रह जाए नी और दवाई तनिकुन कम भी पड़ी तो खेती हो जाएला। और एखन हमरे कर खेत में जैसे खीरा बैगन एखन पछात वाला बीन भी लागल है और बैगन एखन ज्यादा मात्रा में है जे कि बरसात तक हमरे उके बैगन में अच्छा नफा हर साल पाविला। तो एखन जे है एक फसल तो निकल गेलक हमरे कर पहले है मटर और चना, लेकिन एखन बैगन जे है हमरे कर नी वो हमरे कर लास्ट फसल बचल है, वो बरसात तक हमरे कर जब तक पानी नहीं भरी जब तक रोपा नहीं रोपाई तब तक हुआ से हमरे मुनाफा निकलाते रहब। सेकर लागिन हमरे जोर शोर से एखन भाटा के मेहनत करे लाएगी और भाटा में एखन फर फूल एकदम आ जात।
2: अब तो ये भाटा कर बात कर थी से जे हमरे मन पारंपरिक खेती करत रही से मुद का है कि जे आधुनिक वाला है से के लगा हिरो रे।
3: देखो एखन हमरे जे लगा है नी तो दोइन कर खेत में लगा ही दादा। अब उकर में ऐसन होला नी लगभग हमरे उकर में साल भर में चार फसल निकलाई कर प्रयास करीला। जैसे कि एक बार चना निकला ले ली ठीक है, उकर बादे चना उखड़ा ली, उकर बादे एखन बैगन लगाए दे ही, वो फिर एखन धान खेती लगाब बैगन कर बाद में, तो लगभग कुछ कुछ करते हुए चार फसल तो मुश्किल हो जाएला, लेकिन तीन फसल हमरे उकर में कर लेवीला। तो हमरे कर उजक जगह कर तनिकुन कमी है और किसान थोड़ा सा ज्यादा है और सबकर मुख्य पेशा है के खेती, तो हमरे कम खेत में ज्यादा उपज करे कर प्रयास करीला और उपजाऊ मिट्टी कर कारण में हमरे एक एक खेत में तीन फसल कर लेवी।
2: अच्छा हाँ बहुत बढ़िया।
3: हाँ।
2: तो ये नवा तकनीक भी है कि हमरे मन अधिक से अधिक ऐसे फसल चक्र के अपनाओ।
3: हाँ।
2: जेकर से हमरे मन के ज्यादा मुनाफा हो और संगे संगे रोरे जे तौर तरीका खेत में अपना ही सेकर से हमके लगे मुनाफा बगरा हुआ थे।
3: बगरा होवे ला, लेकिन देखो कभी कभार एक मौसम कर अभाव से खेती नुकसान भी हो जाएला, तो कभी मुनाफा होवे ला कभी नहीं होवे ला दादा। लेकिन हम इनका पैसा है के खेती तो हमरे के करे के है, उतना नुकसान और उतना फायदा के नहीं देखीला, लेकिन उम्मीद करीला कि हमरे के फायदा हो उकर लिए ही हमरे उतना जोर शोर से मेहनत करीला।
2: एकदम बहुत बढ़िया है, कारण है कि किसान अगर खेती नहीं करी तो हमरे कर देश कैसे चली। और हम भाई रोरे खेती कर जे तैयारी है से कैसे करीला जे आधुनिक खेती है। अब तो कहल भी जाला कि अगर उनके अपन आय के दुगुना करे है तो आधुनिक खेती बटे उनके उतरे पड़ी, तो रोर तरीका कैसे है खेती करे कर खेत कर तैयारी सबसे पहले फसल लगाए से पहले कैसे करीला।
3: देखो खेत के तैयार करे पड़ेला बहुत सुंदर से, पहले तो ढेला उला हो जात रहे बहुत ज्यादा, पहले तो ढेलफोरा पासत रहे, लेकिन एखन तकनीकी युग कहल जाए तो हमरे का ट्रैक्टर है नी, उकर से हमरे कर खेत कर जोताई बहुत सुंदर से होवेला।
2: हाँ हाँ।
3: और बहुत तो, मतलब अच्छा से खेत तैयार हो जाएला, पहले कांटा हर से जोतवाई लुकर बाद चाइना हर से कर से, मतलब का है कि खेत बहुत अच्छा तरीका से तैयार हो जाएला, उकर बादे हमरे उकर में दर सोटीला, उकर बादे जैसन मन करे पड़ेला उसन खेती हमरे दर बनाए के करीला और बहुत सुंदर से करीला दादा।
2: बहुत बढ़िया। और देखो रोहन भाई रोर से बतिया के लेते बहुत कुछ है और समय कुछ कम है, लेकिन वैसे अगला बार रोर के हमरे मन हकाब नहीं तो रोर और भी जे अनुभव है से के हमरे मन जाने कर कोशिश करब। लेकिन जाते जाते रोरे नौजवान किसान भाई बहन मन के का संदेश देवे खोजी ला।
3: देखो नौजवान किसान मन के हम यह संदेश देवे चाहब कि देखो मेहनत जे करे खाए नी अपन लगन से करे खाए, जैसे कि मान के चलो एखन गर्मी कर खेती लगा ही और खेती के हम के पानी कर जरूरत है और उके हम सोचब कि नहीं दो दिन बादे पटाब, तो देखो टेम्परेचर कर कारण से खेती एक रौद में एक दिन में नुकसान हो जाए ला दादा। से ले एखन कर जे भी खेती करवैया हमार नवयुवक भाई मने है से मन के यह कहे चाहब कि खेती में भी रोर के समय देवे पड़ी और दिमाग से खेती करे पड़ी और शाम सुबह खेती के देखते रहे पड़ी दादा, और उकर में अपन ध्यान दे के उके फसल के उपज बनाए पड़ी, तभे जाए के रौरे मने कुछ कमाए सकिएला। सेल उकर में खेती में बिना ध्यान कर तो नहीं होवी, रौरे मने भी हमेशा खेती के ध्यान देते रहू और समय से

0: पानी, समय से दवाई और उनके सब कुछ समय से देवे। जैसा एगो बालक छुआ के पोसे ले करे के चाहिए, करे के पड़ेला, उसने खेती के भी हमरे के एक पौधा तैयार करे के ले करे के पड़ेला।
1: बहुत बढ़िया रोहन भाई, रोरे अपन खेती बाड़ी कर बारे में, अपन अनुभव कर बारे में बहुत बढ़िया से बता ली।
2: तो ई रहे किसान रोहन महतो, जेकर से भेंट कर लें अरविंद मिश्रा। और भाई इकरे संगे किसान वाणी कार्यक्रम कर बेरा सिरालक। ई कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार,
3: और प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लालकर।

अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हमारी दुनिया।

0: हमारी दुनिया कार्यक्रम सुनो या सब भाई बहन मन के एक बार फिर से कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
1: मनीष भाई भट्ट से जोहार।
0: और मनीष भाई देखो मौसम तो करवट लेवत है।
1: हाँ हाँ।
0: और जैसे पानी और गरज कर साथ जैसे हवा भी चल लग बहुत और आज मौसम तो ठंडा कर दे है।
1: हाँ हाँ।
0: और यह ठंडा गर्म कर मौसम में तनी कुना अपन जीव जहान के भी ध्यान रखे के चाहिए। क्या है कि यह मौसम में तनी जेके कहे ना रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर कर वो कम हो जाए ला,
1: एकदम
0: जैसे कभी ठंडा होला कभी गर्म होला।
1: हाँ हाँ, एक ठंडा गर्म में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाए ला, इसलिए हमरे मन के अपन जीव जहान कर ध्यान बेस से रखे के। और जे जीव जहान के बेस से रखे के लिए जे सरकारी योजना मन है हमरे कर जे स्वास्थ्य ले उके हूँ जाने के जरूरी है।
0: हाँ।
1: काले कि ढेर कन घर में बूढ़ बुजुर्ग मन हूँ रहना जे मन कर इलाज ले तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाए के होला, तो मन योजना मन के जान ले हमरे मन ले ढेर लाभ हो जाएगा।
0: तो देखो बहुत ऐसा आदमी है जे कि बड़ बीमारी हो गए कचिया खर्चा नहीं करे पा रहे हैं ना।
1: हाँ हाँ।
0: तो हमरे कर देश कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल के कई गो ऐसा सरकारी स्वास्थ्य योजना मन के चलाए हैं
1: एकदम।
0: तो ये सब योजना कर मुख्य उद्देश्य वह है मध्यम वर्ग कर जे बीमारी में कचा खर्चा नहीं करे पा रहे हैं जे कि तंगी है सके फ्री में इलाज हो जाए
1: एकदम। और बड़ी राहत हुए लेकर से का
0: एकर में जैसे है आयुष्मान भारत योजना।
1: हाँ हाँ।
0: तो जानते हो मैं सब
1: एकदम
0: कि आयुष्मान एकर में आयुष्मान कार्ड एक ठो बनेला।
1: हाँ हाँ।
0: और योजना कर तहत हर साल हर परिवार के 5 लाख कर मुफ्त इलाज कर सुविधा भेटाएल
1: एकदम। तो जे जे भाई बहन मन नहीं बनाए हैं अखन तक आयुष्मान भारत कर कार्ड है जे उकर कार्ड सब कोई बनवाई ले।
0: और दूसर है जैसे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना देखन कहीं कहीं माने रोड किनारे देखब कि जन औषधि केंद्र खुलल है।
1: हाँ हाँ।
0: तो उस सरकारी जैसे दवाई कर केंद्र है और बीमारी में देखो दवाई कर खर्चा तो सबसे बगरा हो गया।
1: हाँ।
0: और इखे दे की योजना चलावल जाए है जन औषधि माने योजना और इकर में जैसे बहुत बढ़िया क्वालिटी कर जेनरिक दवाई मन मिलेल और वो दवाई जैसे और दवाई से 50% से लेकर 90% तक सस्ता हुए ले।
1: एकदम। तो बहुत हमरे मन ले
0: तो,
1: राहत कर बात है।
0: हाँ बहुत राहत कर बात है। जैसे मान लो कि जोन दवाई कर 100 रुपया दाम है।
1: हाँ,
0: से
1: हाँ।
0: अगर 20 रुपया मिल गया तो कितना राहत
1: तो
0: कर बात
1: एकदम।
0: है। और फिर है देखो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना। ये योजना कर तहत जैसे गांव गांव में सरकारी अस्पताल है।
1: हाँ हाँ।
0: है न जैसे सदर अस्पताल है और ब्लॉक ब्लॉक में तो सरकारी अस्पताल ही है।
1: हाँ हाँ।
0: और इकर में देखो मुफ्त जांच होवे ला मुफ्त कर दवाई मिले ला टीकाकरण कर भी सुविधा मिले ला। और गांव में जैसे सहिया दीदी मन हो ना नहीं मन भी जैसे मन कर माध्यम से भी छोट छुआ मन कर देखभाल होवे ला। तो ऐसने बहुत सारा योजना मने है और वो योजना में है जैसे जननी सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना। लेकिन ध्यान देवे की बात है ना कि ये सब योजना कर लाभ लेवे के लिए आधार कार्ड राशन कार्ड आयुष्मान कार्ड ये मन बहुत जरूरी दस्तावेज है। और तो जानते हो कि जैसे ये कार्ड रहल से ही ये सुविधा मिली
1: एकदम।
0: और ये नज़दीकी का प्रज्ञा केंद्र में जाए के पता करे के और जेकर नखे से वो डाउनलोड हो जाए
1: एकदम। और कार्ड बन के बनवाई के रखे के का कहिला।
0: तो यह सब करके और योजना कर लाभ उठावे के
1: एकदम। तो हमरे मन के स्वास्थ्य रहे के तो सरकारी योजना कर हूँ लाभ लेवे जरूरी है का।
0: और देखो स्वास्थ्य रहे खातिर गीत गोविंद और कविता मन भी जरूरी है ने।
1: एकदम। जेकर तबियत ठीक नखे ओ मन कर कविता मन गीत मन सुन ले एकदम हरियर हो जाएला जीव।
0: तो कविता मन कर जुगाड़ है नी
1: एकदम। तो चलो आज हमरे कुरमाली कविता कर जुगाड़ लेके आई ही और कवि है महावीर महतो। चलो सुनीला कविता।
2: चला गावले बंधु सिरी सकुसुम रे

आसन गाछी रोपी पसा तसर पकारे तसर पकाई रे समय लुगा पिंधे के मजारे।

तोरा छोआ पुता सबके पढ़ाओ हान तबे तेग देश कर कल्याण देश भी।

0: নিরণ হার নিরণ জ্যোতিহার আষাঢ় দোহরাওয়ারে ও রে ও চাষা ভাই।
1: भाकपा माओवादी के भाई और बहनों, सरकार आपके पुनर्वास के लिए लगातार प्रयासरत है। अतः आपसे आग्रह है कि वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करते हुए सही निर्णय लेकर मुख्यधारा में लौट आइए। भाई मुक्त जीवन का आनंद अपने परिवार के साथ लीजिए। साथियों, समय रहते विचार कीजिए और मुख्यधारा में लौट आइए। साथियों, आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जल, जंगल, जमीन की रक्षा मात्र हिंसा से ही हो सकती है? इतने सालों की प्रयास के बाद क्या हमारा आदिवासी समाज सुरक्षित हो पाया? आज सैकड़ों पूर्व माओवादी साथी हिंसा को पीछे छोड़कर समाज के बीच एक अत्यंत गरिमापूर्ण और कुशल जीवन बिता रहे हैं। प्रशासन आपकी सुरक्षा और गोपनीयता की 100% गारंटी देता है। हिंसा और कठिनाइयों का जीवन छोड़े और अपनों के पास लौट आए। मुख्यधारा में आने के उपरांत आपको पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यधारा में आने के बाद आपको जेल जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी और आपकी सहायता की जाएगी। मुख्यधारा में आने के बाद आपको सारी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। स्वरोजगार के लिए भी आपको उचित अवसर प्रदान किए जाएंगे। पुनर्वास हेतु कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 9863475217। नंबर एक बार फिर नोट करें 9863475217।
2: তো এখানে আমরা মানে শুনলি একটু সন্দেশ আর আউ শুনেছি বাসুদেব মহতোর সঙ্গী মনকর গাওয়া লাগো খোরঠা লোকগীত।
3: চলু তব শুনলে বেলা।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
6: तो भाई इकरे संगे हमारी दुनिया कार्यक्रम कर बेरा सिरा अलग,
7: कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लाल कर।
6: तो सुनुया भाई बहन मने अब रावण कर संगे कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
7: मनीष भाई के देव विदा
6: जोहार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारी दुनिया, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में यानी 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, कर्नाटका के एक दंपति सुपारी के रेशे से बनी कई यूनिक प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटका में शिवमोगा में ये दंपति हैं, श्रीमान सुरेश और उनकी पत्नी श्रीमती मैथिली। ये लोग सुपारी के रेशे से ट्रे, प्लेट और हैंडबैग से लेकर कई डेकोरेटिव चीजें बना रहे हैं। इसी रेशे से बनी चप्पलें भी आज खूब पसंद की जा रही है। उनके प्रोडक्ट्स आज लंदन और यूरोप के दूसरे बाजारों तक में बिक रहे हैं। यही तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक हुनर की खूबी है जो सबको पसंद आ रही है। भारत के इस पारंपरिक ज्ञान में दुनिया सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते देख रही है। हमें खुद भी इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। हम खुद भी ऐसे स्वदेशी और लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और दूसरों को भी ये उपहार में दें। इससे हमारी पहचान भी मजबूत होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और बड़ी संख्या में लोगों का भविष्य भी उज्जवल होगा।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, देश में संविधान और पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कराए जाते हैं चुनाव। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भोजपुरी, मैथिली और अंगिका जैसी भाषाओं के सम्मान पर दिया जोर। कहा, जिन जिलों में जनजातीय भाषा बोलने वाले नहीं, वहां उसे अनिवार्य करना गलत। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए विद्यार्थी 1 जून से कर सकेंगे आवेदन। सीबीएसई का रिजल्ट के बाद प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए नया पोर्टल 1 जून से होगा शुरू। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो और धनबाद सहित राज्य के 11 जिलों में कल बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं की जताई आशंका। लोगों से सतर्क रहने की अपील। और झारखंड प्रीमियर लीग के लिए जमशेदपुर में खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया पूरी। आईपीएल की तर्ज पर 10 जून से रांची में खेले जाएंगे 28 मुकाबले। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि राज्य के कई जिलों में भोजपुरी, मैथिली और अंगिका जैसी भाषाएं व्यापक रूप से बोली जाती हैं, जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। आज धनबाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में जनजातीय भाषा बोलने वाले नहीं है, वहां उसे अनिवार्य करना तर्कसंगत नहीं है।
1: हम लोग हर भाषा का सम्मान करते हैं, तो जनजातीय भाषा है वो सब कुछ स्वीकार है, लेकिन जिस जिले में मैथिली और भोजपुरी बोली जाती है वहाँ जनजातीय भाषा को अनिवार्य करना ये तर्कपूर्ण बात नहीं है। तो ये नियमावली में हम इतना ही सुधार चाहते हैं कि ये जो आपने अनिवार्यता लागू कर दी है, जिस जिले में उस भाषा की पढ़ाई नहीं होती है, टीचर नहीं है, तो वहाँ इसे लागू किया जाना, तो वहाँ के बच्चों का तो भविष्य खराब हो जाएगा। तो हम लोग की मांग यही थी कि इस
0: भाषा
1: को शामिल।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की गई। धनबाद में आज श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से 1 दिवसीय दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। सहायक नियोजन पदाधिकारी पद्मा कुमारी ने बताया कि रोजगार मेले का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
2: सभी सेक्टर की कंपनी है, जिसमें एलएनटी है, होंडा है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, रिलायबल इंडस्ट्रीज है, इस तरह की कंपनीज है, और इसमें मुख्य रूप से आईटीआई ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए है। झारखंड के और खासकर धनबाद की भी कंपनियां हैं और साथ साथ बाहर की भी कंपनियां हैं। तो युवाओं से मेरा अनुरोध है कि अपने आप को रजिस्टर करें नियोजनालय में और समय समय पे होने वाले इन एक्टिविटीज का पार्ट बने।
0: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने आज नगड़ी स्थित ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था, रख रखाव और तकनीकी प्रबंधन की स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के खूंटपानी प्रखंड मुख्यालय से आज महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो नामक एक जागरूकता रथ को रवाना किया गया। जिले के उपविकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार ने इसे हरी झंडी दिखाई। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर कल रांची के नामकुम स्थित IPH सभागार

0: काटने के दौरान जो है इंजर्ड हो गए थे, पीठ के साइड में थोड़ा सा इंजरी हुआ था। इलाज के दौरान पता चला कि 10 से 12 काटे लगे थे। इस चोरी का जो है उद्भेदन करते हुए सहर थाना पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फंगाल आ गया, पहचान किया गया था सानू आलम पिता फिरोज आलम। शहर में आसपास छोटी मोटी चोरी घटना जो हुई है विगत दिनों में, ये लोग उसमें शामिल किए।
1: और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो, लोहरदगा, गुमला और धनबाद समेत 11 जिलों में कल गर्जन के साथ बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। विभाग के वरीय वैज्ञानिक ने बताया कि इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।
2: जो लगातार 2 से 3 दिनों से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है, उसकी वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट जो है वो देखी जा रही है। तो हमारा अनुमान ये है कि आज भी जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है, जिसको देखते हुए कई मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन के लिए जो है अलर्ट भी जारी किए गए हैं। हवा की गति जो है वो भी काफी तेज रह सकती है, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा रह सकती है, चेतावनी भी जारी की गई है।
1: रांची विश्वविद्यालय के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 5 मई से आयोजित 21 दिवसीय योग शिविर का आज समापन हो गया। इस अवसर पर छात्र कल्याण संकाय के अध्यक्ष डॉ. सुदेश साहू ने योग को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का सशक्त साधन बताया। आईपीएल की तर्ज पर झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने झारखंड प्रीमियर लीग की शुरुआत कर दी है। जमशेदपुर में आयोजित खिलाड़ियों की नीलामी में करीब 126 खिलाड़ी शामिल हुए। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संजय पांडे ने बताया कि लीग की शुरुआत 10 जून से शुरू होगी। इस दौरान 28 मैच खेले जाएंगे।
3: हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा आएं और खेलें और नेशनल लेवल पर अपने टैलेंट को दिखाएं। बड़े बड़े फ्रेंचाइजी देखेंगे तो आने वाले समय में हमारे बच्चों को राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर खेलने का मौका मिलेगा। बाहर के खिलाड़ी को, किसी भी राज्य का खिलाड़ी को हम लोग अलाउ नहीं करें, ये हमारे लोकल बच्चे के लिए है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, देश में संविधान और पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कराए जाते हैं चुनाव। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भोजपुरी, मैथिली और अंगिका जैसी भाषाओं के सम्मान पर दिया जोर, कहा जिन जिलों में जनजातीय भाषा बोलने वाले नहीं वहां उसे अनिवार्य करना गलत। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए विद्यार्थी 1 जून से कर सकेंगे आवेदन। सीबीएसई का रिजल्ट्स के बाद प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए नया पोर्टल 1 जून से होगा शुरू। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो और धनबाद सहित राज्य के 11 जिलों में कल बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं की जताई आशंका, लोगों से सतर्क रहने की अपील। और झारखंड प्रीमियर लीग के लिए जमशेदपुर में खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया पूरी। आईपीएल की तर्ज पर 10 जून से रांची में खेले जाएंगे 28 मुकाबले। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता।
1: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर अल नीनो इफेक्ट को ध्यान में रखकर संयुक्त कृषि विभाग तैयारियों में जुट गया है। साहिबगंज भूमि संरक्षण विभाग वित्तीय वर्ष 2025-26 में 52 तालाबों का जीर्णोद्धार, 99 परकुलेशन टैंक तथा 13 बोरिंग का निर्माण किया है, जिससे लगभग 2500 एकड़ भूमि सिंचित होगी। विगत 3 वर्षों में इस प्रकार कुल 300 तालाबों का जीर्णोद्धार, 500 परकुलेशन टैंक और 200 बोरिंग से लगभग 12,000 एकड़ भूमि सिंचित होगी। विभाग ने अल नीनो प्रभाव को देखते हुए किसानों को जल संचय के लिए खेतों में वाटर रिचार्ज पिट बनाकर जल संचय करने की अपील किया है।
2: अल नीनो इफेक्ट के चलते आने वाले समय में बाढ़ की स्थिति बन रही है, इसको लेकर विभाग के स्तर से और हम लोग भी अपने स्तर से तैयारियां कर लिया है। तालाब जीर्णोद्धार हो, पॉपुलेशन टैंक हो या फिर ड्रिप बोरिंग के माध्यम से कैसे हम लोग जल संरक्षण या जल का उपयोग कर सकते हैं। तालाब में हम लोग को लगभग 1200 एकड़ हम लोग सिंचित एरिया इस बार नया जनरेट करने वाले हैं। पॉपुलेशन टैंक में लगभग

0: 500 एकड़ हम लोग और बोरिंग से हम लोग लगभग 80 एकड़, तो कुल मिला के हम लोग 2500 एकड़ नया सिंचित एरिया हम लोग इस बार तैयार करेंगे। लगभग 3000 के आसपास किसान इससे लाभान्वित होने वाला है।
1: ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान इस वित्तीय वर्ष में कुल 35 विषयों पर 1050 लोगों का कौशल विकास कर स्वरोजगार से जोड़ने पर कार्य कर रही है। वर्तमान में साहेबगंज आरसेटी में उद्यानिकी और ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा संचालित इस संस्थान के प्रशिक्षण का लाभ आदिम जनजाति के लोगों को भी मिल रहा है। इस हुनर को सीखकर अपने अपने क्षेत्रों में यह स्वरोजगार से भी जुड़ रहे हैं।
2: ग्रामीण परिवेश के प्रशिक्षणार्थी होते हैं के लिए संस्था चुकी है, ये संस्था है। तो इस वित्तीय वर्ष में हमारे यहाँ भी अभी दो ऑन गोइंग प्रोग्राम कार्यक्रम चल रहा है और दो पायलट कार्यक्रम हो चुके हैं। ब्यूटी पार्लर वाला जो कोर्स मेरा चल रहा है उसमें आपको 35 है और हॉर्टिकल्चर वाला मेरे 30 है। और इस साल हम लोगों का जो अभी तक का प्रोग्राम जो दिया गया है भारत सरकार के द्वारा से, अभी तक टोटल हमको 35 प्रोग्राम कराने हैं।
1: वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग साहिबगंज ने भी वन्य जीव संरक्षण और जल संचयन की दिशा में विभिन्न चेक डैम के माध्यम से पहाड़ी इलाकों में बारिश के पानी को संचय करने पर कार्य किया है, जिसका लाभ वन्य जीवों पर्यावरण के साथ साथ स्थानीय कृषि को भी हो रहा है। वन विभाग साहिबगंज के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में इन पहाड़ों पर होने वाले वर्षा जल को संचित करने के लिए कुल 26 चेक डैम का निर्माण हुआ है। वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग ने बताया,
3: साहिबगंज के जो राजमहल पहाड़ियां हैं उनमें बारिश का पानी रुकता नहीं है और वो बहुत तेजी से गंगा नदी की तरफ बह जाता है, जिससे वन्य जीव जो रह रहे राजमहल के पहाड़ियों में उनको भी पानी की असुविधा होती है, साथ में जो ग्रामीण है। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने वन भूमि के किनारे ऐसे जल स्रोतों का निर्माण किया है या पुनरुद्धार किया है, जिनसे वनों में रह रहे जीवों को भी पानी मिले, जो भूगर्भ जल है ग्राउंड वाटर रिचार्ज वो भी हो, और तीसरा वहां पास रह रहे ग्रामीणों को भी इससे पीने का पानी मिल रहा है।
1: देश में पहली बार आज ही के दिन हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज।
4: अभी आप सुन रहे थे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं हो लोक गीत। कलाकार हैं दुखो सिंह हो और साथी।

0: अभी आप सुन रहे थे हो लोकगीत, कलाकार थे दुखू सिंह हो और साथी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है और आइए अब सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार क्रमशः नागपुरी, उरांव, मुंडारी, हो और संताली भाषाओं में।
1: आकाशवाणी रांची है के अब रौरे में नंजू कुमारी से नागपुरी में साप्ताहिक समाचार सुनू। सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च उच्च न्यायालय मन के महत्वपूर्ण निर्देश दे है कि कोन्हों ए मामला में फैसला सुरक्षित राखे कर 3 महीना कर भीतरे उके जरूरी रूप से सुनाल जाए। इसन्नी होले पक्षकार केस के दोसर पीठ में स्थानांतरित करेकर मांग कर सके ना। केंद्र सरकार घुसपैठ और दोसर कारण मन से देश कर आबादी कर ढांचा में हो रहल बदलाव से निपटे के लिए एगो उच्च स्तरीय समिति कर गठन कर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय अखंडता और समरूपता ले बड़ खतरा बताते एगो तय समय सीमा कर भीतरे दशकों पुरना समस्या का समाधान का संकल्प के दोहरा है।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कही है कि सरकार सब जनजातीय समुदाय मन के सम्मान नागरिक संहिता कर दायरा से बाहर रखे के लिए खास प्रावधान कर है। इकर उद्देश्य उमन कर अधिकार मन के संरक्षित रखे है। नई दिल्ली में आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम में उ भगवान बिरसा मुंडा कर विरासत कर हो उल्लेख कर लें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची कर आडरे हाउस में आदि निवास डिजिटल ऐप का शुभारंभ कर लें। इस मौका में कहलें कि ई ऐप गोटा देश कर आदिवासी समुदाय के एक मंच में जोड़े कर संगे संगे उमन कर संस्कृति, भाषा, परंपरा और रहन सहन कर संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर तहत एगो बड़ कदम उठा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जरिए झारखंड संगे देश कर 12 राज्य के 10,000 करोड़ रूपया से अधिक राशि जारी कर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में 66

0: जन के पद्म पुरस्कार से सम्मानित कर लें। पहला चरण में 2 जन के पद्म विभूषण, 6 जन के पद्म भूषण और 58 जन के पद्मश्री दिलें। अब की धाव कर पद्म पुरस्कार मनकर सूची में दिवंगत विश्वम गुरु शिबू सोरेन के पद्म भूषण देवे कर घोषणा करल जाहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य सरकार कर कई गो विभाग मनकर कामकाज कर समीक्षा बैठक शुरू कर हैं। 11 जून तक चले वाला ई अभियान कर तहत मुख्यमंत्री अपने सब प्रमुख विभाग मनकर अद्यतन प्रगति और जन कल्याणकारी योजना मनकर जमीनी हकीकत कर आकलन करत हैं। राज्य सरकार अपन कर्मचारी मनकर महंगाई भत्ता में 2% कर बढ़ोतरी कर दे है। 27 मई के होवल राज्य कैबिनेट कर बैठक में प्रस्ताव के मंजूरी देवल गेलक। बैठक में प्राथमिक चिकित्सा ले 745 अबुआ दवाखाना खोलेक और नशा कर सूचना देवेक वाला मन के इनाम देवेक संगे कुल 39 को प्रस्ताव मन के मंजूरी देवल जा है। राज्य कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार मतदाता मन के वोटर लिस्ट मैपिंग अभियान से जुड़े कर अपील कर हैं। वो कहलें कि तकनीकी दिक्कत मन से घबराए कनक है। जे मन कर नाम ऑनलाइन नी मिलत है उमन ले विशेष कैंप कर पाछे भी ये लोग खुद घर घर जाए के मैपिंग कर काम पूरा करबें। धनबाद कर सदर अस्पताल कर युवा मैत्री केंद्र के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में देश भर में 3रा स्थान मिल है। इस सम्मान जवान मन के स्वास्थ्य संबंधी बेस सलाह और सुविधा मन उपलब्ध करवाए कर क्षेत्र में बढ़िया काम ले देवल जा है। रांची पुलिस प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI का संगठन प्रमुख और 10 लाख रुपया कर इनामी उग्रवादी अमृत होरो के गिरफ्तार कर है। लातेहार पुलिस JJMP कर 5 लाख रुपया कर इनामी सब जोनल कमांडर शिव नारायण भुइया संगे 2 गो उग्रवादी मन के गिरफ्तार कर है। देवघर एम साइज अपन 8वां स्थापना दिवस बहुत खुशी से मनालक। समारोह में मुख्य गोतिया केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सांसद निशिकांत दुबे शामिल होलें। इस मौका में चिकित्सा क्षेत्र में बेस करे वाला डॉक्टर और कर्मचारी मन के सम्मानित करल गेलक। भारत सरकार कर संस्कृति मंत्रालय बटे से घोषित नेशनल स्कॉलरशिप ले सरायकेला कर 2 गो जवान कलाकार मन कर चयन हो है। नीलदीप कुमार साहू के 6 संगीत और अभिजीत दीत के 6 नाचले प्रतिष्ठित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मिली। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि से स्थानीय 6 कलाकार मन बहुत खुश है। रांची संगे राज्य कर कई गो जिला मन में होवल झमाझम पानी बरसे कर चलते आदमी जन के भीषण गर्मी से राहत मिले। पानी बरसल पाछे राइज कर कई जगन तापमान में 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज करल गेलक। रांची कर बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 22 से 25 मई तक आयोजित 29वां नेशनल सीनियर फेडरेशन कप प्रतियोगिता कायगो नवा राष्ट्रीय और मीट रिकॉर्ड्स कर संगे संपन्न हो गेलक। 4 दिवसीय महाकुंभ में पंजाब कर गुरिंदर वीर सिंह 100 मीटर दौड़ में और देव मीना और कुलदीप कुमार पॉल वॉल्ट में नवा राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना लें। इकरे संगे आकाशवाणी रांची से नागपुर पुरी में साप्ताहिक समाचार सिरालक।
1: ईद आकाशवाणी रांची ही के अक्कू निम निर्मला खलखो ती कुड़ुकनु हफ्ता खबर में ना सर्वोच्च न्यायालय देश ता हुरमी उच्च न्यायालय गे महत्वपूर्ण निर्देश चिचकी रही। मैया ता अदालत बाजकी रही का एक अम हो मामला नो फैसला सुरक्षित उइना ही 3 महीना ही भीतरे अधीन अनिवार्य रूपे ती मेंताना चाहिए। इन्ने मल मना हने पक्ष ता आलर दूसरा पीठ नु बदलाना ही मांग नन्ना उंगनर। केंद्र सरकारत घुसपैठ और नन्ना कारण ती देश ही आबादी ही ढांचा नु मनु आबो बदलाव ती निपटार आगे उनटा उच्च स्तरीय कमेटी ही गठन नंजकी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय अखंडता और समरूपता गे कोहा खतरा तिंगतेम उनटा निश्चित समय सीमा ही भीतरे ई पच्चा समस्या ही समाधान ही संकल्प दोहराज का रस।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाचस का सरकारद हुर्मी जनजातीय समुदाय के समान नागरिक संहिता ही दैरा तिबहरी उगे विशेष प्रावधान नंजकार अस इदि ही उद्देश्य आर ही अधिकारण सुरक्षित उन्ना ही के नई दिल्ली नु मंच का जनजातीय सांस्कृतिक समागम नु आज भगवान बिरसा मुंडा ही विरासत ही हूँ उल्लेख नंजस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची था आड्रे हाउस नो आदि निवास डिजिटल ऐप ही ओरे नंजस ई बेड़ा मैया आस बाचस का ई ऐप देश भर ता आदिवासी समुदाय ओन संगम जोड़ना संगे संगे आर ही संस्कृति भाषा परंपरा और जीवन शैली बचा बना नो महत्वपूर्ण भूमिका निभावो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ही चड्डे उन्टा कोहा कदम उठावास का रस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते झारखंड संगम देश ता 12 राज्य गे 10,000 करोड़ ढिबा ती बग्गे राशि जारी नंजका रस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन नु 66 हस्तिर गे पद्म पुरस्कार ती सम्मानित नंजस पहली चरण नु आस 2 आलर इन पद्म विभूषण 6 आलर गे पद्म भूषण और 58 आलर गे पद्म श्री चितारा केरा ई खेपता पद्म पुरस्कार ही सूची नु दिवंगत दिशुम गुरु शिबू सरिंगस गे सिन पद्म भूषण चिन्ना ही घोषणा नंजका रही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य सरकार ता नन्ना विभाग ता नलक ही मैराथन समीक्षा बैसक ओरे नंजस 11 जून गुटी चल रू आबो ई अभियान ही चड्डे मुख्यमंत्री स्तंग आहुर्मी प्रमुख विभाग ही अध्यतन प्रगति और कल्याणकारी योजना जमीनी हकीकत ही आकलन नन्ना लगदस राज्य सरकार तंग आ कर्मचारी ही महंगाई भत्ता नो 2% बढ़ोतरी नंजकी रही 27 मई उल्ला मंजका राज्य कैबिनेट ही बैसकी नु ई प्रस्तावन मंजूरी चितारा किरा बैसकी नु प्राथमिकी चिकित्सा गे 745 अबुआ दवा खाना कुलना और नशा ही सूचना चिउ आलर गे इनाम चिन्ह संगम जमा 39 प्रस्ताव के स्वीकृति चितारा केरा राज्य का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार मतदाता रे ही वोटर लिस्ट मैपिंग अभियान ही तिजुड़ना ही अपील नंजकर अस आस बाचस का तकनीकी दिक्कत ती घबराना ही चार मल्ला एका आलर ही नामे ऑनलाइन मल हखरा लगी आर गे विशेष कैंप ही खोखा BLO तानिम एड़पा एड़पा कालर की मैपिंग ही नलखन पूरा ननोर धनबाद ता सदर अस्पताल ता युवा मैत्री केंद्र राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम नु देश भर ती नु तीसरा अड्डा हखर की रही ई सम्मान युवर ही स्वास्थ्य संबंधी बेहतर परामर्श और सुविधा उपलब्ध नंताना ही पहटानु द नलक के चितार अकाला लगी रांची पुलिस प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI ता संगठन प्रमुख और 10 लाख ढिबा ही इनामी उग्रवादी अमृत होरो सिंह गिरफ्तार नंजकर ए अज्जू लातेहार पुलिस JJMP ता 5 लाख ढिबा ही इनामी सब जोनल कमांडर शिव नारायण भुइया संगे दुई उग्रवादी रिन गिरफ्तार नाना नु सफलता हक कर अनर आकाशवाणी रांची ती कुरुख नु हफ्ता खबर मुंजरा
3: नया आकाशवाणी रांची तना होड़ो जगत ते मेदा ठाउरे रे खबर को लोते आई बसंती मुंडा सुप्रीम कोर्ट दिसुम रिया सोबेन हाई कोर्ट को के हाईकोर्ट को मेनते जरूरन निर्देश को ओमतेदा सुप्रीम कोर्ट काजीतेदा ची जेतान मामला रे फैसला जोगाओ क्याते आपी चांडू बितार गे एना जरूरते अमेरिका ओका नेलिका का होबाजान रे फैसला होबाओ ने केस एटा पीट रे कुल मेनते आरजी ओ में दाड़िया केंद्र सरकार घुसपैठोड़ो एटा सुसी को ते दिसुम रे होबा ओतन होड़ो को अपनोसाते बंचावन मेनते मियाँ चेतन उत्तर समिति राबा नहीं होबा कना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की नया दिसुम रिया अखंडता और संप्रभुता मेंते मरंग खतरा उद्वेतान लो मियाद नेडा कान समय बितार नया सिदारा पूर्णा बलाय चाबागिड़ी मेंते मोने केटे में नया किन जगह रुवरते दा
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तकिन किन काजी के दची सरकार सोबेन जनजाति गोट को के समान नागरिक संहिता रे अचीना ते बाहर जोगा मेंते बुगिन नियम किन बाईतेदा नेहरा बुगिन जगर दो अकुआ हक को बंचाव जोगा तना नई दिल्ली रे होबाजन जनजातीय सांस्कृतिक समागम रे

0: কিন ভগবান বিরসা মুন্ডা তাকিনাতে সিদা তে সেসেন আগু তান করে অকিন জাগার কেদা মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন তাকিন রাঁচি রে আড্রি হাউস রে আদিনিবাস ডিজিটাল এপ রে আকিন এটে পুনা কেদা নে দিপলি আকিন কিন কাজি কেদা চি নেয়া এপ গোটা দিসুম রেন আদিবাসী গোট কো মিদ আখড়া রে জটোলো তে আকুয়া সাসাংকির জাগার পরম্পরা ওড়ো জিদান রা হেওয়া কো বাঞ্চাও গে গনুঙান কামি কামিয়া কেন্দ্রীয় গ্রামীণ বিকাশ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান তাকিন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা হাতু কমেনতে মেদ মারং চান্ডাং কিন রাখাব তেদা আকিন ভিডিও কনফারেন্সিং হরাতে ঝাড়খণ্ড লোতে দিসুম রেয়া গেল বারিয়া রাইজ কমেনতে গেল হাজার কারোর টাকাতে চেতান টাকা কিন ওম কেদা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাকিন রাষ্ট্রপতি ভবন রে আপি হিসি তুরি মাইনান হড়ক পদম মাইন পটম তেকিন মাইনকেত কোয়া এটে রে আকিন বার মাইনান হড়কিন পদম বিভূষণ তুরিয়া কোকে পদম ভূষণ ওড়ো বার হিসি গেল ইরিলিয়া কোকে পদম শ্রীকিন উমাকেত কোয়া নেস্করং পদম মাইন পটম কোয়া লেনেকা রে বঙ্গা জানকিন দিসুম গুরু শিবু সোরেন তাকিন কে পদম ভূষণ ওমেরা উদুপ সদরাকানা মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন তাকিন রাজ্য সরকার এটা এটা বিভাগ করা কাজে কামি করা সেন কেয়াতে লেলুয়ার দুনুকিন এটে এতেদা গারাজুন সান্তে সেসেন নেয়া অভিযান সাগাতে মুখ্যমন্ত্রী তাকিন সোবেন মুদ মুদ বিভাগ করা হবাকান কামি ওড়ো হড়ো কমেনতে বুগিন যোজনা করা জমিনি হকিকত রেয়া লেল কেয়াতেকিন অনুমানতনা রাজ্য সরকার আপন কর্মচারী কো মহঙ্গাই ভত্তা রে 12% কিন সাঙ্গিতেদা 27 মই হুলং রাজ্য ক্যাবিনেট রে দুনুব রে নেয়া কাজে যোগাও কানা মঞ্জুরি কো ওমলা দুনুব রে প্রাথমিক চিকিৎসা মেনতে এএসআই 12 হিসি মোড়িয়া আবু আর রানু দোকান খোলা ওড়ো বুলেন কো সূচনা ওমতন কো ইনাম ওমলোতে কুল মিদ হিসি গেল আরেয়া কাজে যোগাও কো স্বীকৃতি কো ওমকেদা রাজ্য রেয়া মুখ্য নির্বাচন পদাধিকারী কে রবি কুমার তাকিন মতদাতা কোয়াতে ভোটার লিস্ট ম্যাপিং অভিযানতে জটোগেন রেয়া কিন আপিল তেদা আকিন কিন কাজি কেদাচি তকনিকি বালায় কোতে বড় রা জারুর বানো ওকন হড়ো কোয়া নুতুম অনলাইন কা নামো তেনা এনকান কুয়া আমেনতে বিশেষ ক্যাম্প বাই কেয়াতে বিএলও ওড়া ওড়া সেন কেয়াতে ম্যাপিং কামি পুরাওয়া ধনবাদ রেয়া সদর আসপাতাল রেয়া যুবা মৈত্রী কেন্দ্র রেন রাষ্ট্রীয় কিশোর স্বাস্থ্য কার্যক্রম রে গোটা দিসুম রে আপিয়া টায়াদে নাম তেদা নেয়া মাইন সেপেড়েদ হাপানুম করে স্বাস্থ্য সম্বন্ধী বুগিন সোলা উদুব ওড়ো ওমরিকা রা মেনতে বুগিন উত্তর কামে মেনতে ওম জানায় ভারত সরকার সংস্কৃতি মন্ত্রালয় সাগতে উদ্বাকা ন্যাশনাল স্কলারশিপ মেনতে সরাইকেলারেন বারিয়া কলাকার কিনা সানালা হবাকনা নীলদীপ কুমার সাহু কে ছো দুরং ওড়ো অভিজিৎ দীত কে ছো সুসুন মেনতে মাইনগারং রাষ্ট্রীয় ছাত্রবৃত্তি কিন ওমোয়া নিয়ালতেগে মেদ আঠাউরি রেয়া খবর কো চাবালেনা জোয়ার
1: নিনা আকাশবাণী রাঁচি তানা না আবেন ডক্টর প্রদীপ কুমার বোদরা তাহতে মি হাটো খবর হোয়ায়ামতে আয়ুমেবেন মুলুক রিয়া মারাং উত্তর কোর্ট সাবিন রাজ রিয়া হাইকোর্ট কো মাহাত মারাং ইঙ্গুল কো এমাকানা মারাং উত্তর কোর্ট কাজিতানে চি জেতান মামলা করে ফায়সালার রাকারি কে কেতে আপে চান্ডু ভিতরে এনা জরুর আয়ুম ইচি ওকা এনকা কাহবান রে এন কে সে এটারে বদলে তিয়া আসি দায়ুয়া ভারত সরকার বাহারি মুলুক রেন হড় কো অন্ড এটা কারণ তে মুলুক রিয়া জনসংখ্যা উসুরতে হারদুন লাগিন মিয়েন চেতান লেবল রিয়া কুমুটি রিয়া বাইবিলি ডেকানা মুরদুয়ান তেকিং জাগার কেডাচি নিনা মুলুক রিয়া লাগিন মিয়েন কোসডরতনা মেন তেকিং উদুক তান লো মিয়েন তোলাকান সময় ভিতরে নেন পাপারি সমস্যা কো সমাধান রিয়া বাডায় দোরাওয়ে তাডা
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तिकिन जगरतड़ा चीस सोरका सबिन आदिवासी गोट रेन सम्मान नागरिक संहिता तलमलारे कार्य के को लागिन विशेष आइन किंग एम तरह नई दिल्ली रे होबालेन आदिवासी दोस्तों दुनुब रे आकिंग भगवान बिरसा मुंडा तिकिन उलगुलान ओंडो इतिहास रे आकिंग जगरतड़ा राज्य मुनुदुवन हेमंत सोरेन तिकिन रांची रे मिना आड्रे हाउस रे आदि आदि निवास डिजिटल ऐप रे किंग एट एकेडम नेन उड़ी रे अकिंग जगरतड़ा केडाची निना एप गोटा मुलुक रेन आदिवासी गोट को मी मचारे जुड़ाओ लो अकुआ दोस्तुर हायम मुनु चलन ओंडो जीवन हुनर रे रखा रे मात मरंग देगा एमिया केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान तिकिंग प्रधानमंत्री आवास योजना हतु लेकते मरंग पैटी तना अकिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिया देंगते झारखंड सुल मुलुक रिया 12 राज्य को 11,000 करोड़ टका एते पूरे टका बीती किंग एम तड़ा मुलुक गोम के द्रौपदी मुर्मू तिकिंग राष्ट्रपति भवन रे बरदौसी तुर होड़ोको के पद्म पुरस्कार तेकिंग माइन केट कुआ आयरते आकिंग बारी है पद्म भूषण तुरुए पद्म भूषण ओंडो बारी सी रिल पद्मश्री को एम जाना निंदाऊ पद्मश्री पुरस्कार या सूची रे दनंग जन दी दिसुम गुरु शिव सोरेन तेकिंग पद्म भूषण एम ओरिया डकरा कना राज मुर्दुवन हेमंत सोरेन तेकिंग राज्य सरकार या किले मिली पाइट को रिया मिरतन समीचा दुनुप किंग एटे केडा 11 जून जोंग सेसंती अनिन अभियान लेकते राज मुर्दुवन अकिंगे सबिन मुन विभाग कोरिया निमिर सेशन तन ओंडो होड़ोक को ते सगाईकन बलाई योजना कोरिया सारी किंग पंजानामिया राज सरकार अपना कमिया को कुआ महंगाई भत्ता 12% बढ़ाओ जना 27 मई मुसिंग राज कैबिनेट रिया दुनुक रेनेन प्रस्ताव मंजूरी एम लेडा राज्य रेन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार मतदाता को ते वोटर लिस्ट मैपिंग अभियान ते जुड़ाउन पे मेनते किंग जगरतड़ा धनबाद रिया सदर अस्पताल रिया युवा मैत्री केंद्र के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम रे मुलुक कोटारे 13 तैडा नाम तड़ा रांची पुलिस दबनकन बुरु होड़को असंगठन PLFI रिया संगठन मुणु ओंडो 10 लाख टका रिया इनामी बुरु होड़ो अमृत होरो सब जना देवधर देवगर एम स्टिकिंग अपना इरिलिया बाइबिट दिलंग एसुरांस राशिका लो मनातिंग किडा नेन समारोह रे मुन कुपुल केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ओंडो संसद निशिकांत दुबे तिकिंग सम्मिलना भारत सरकार रिया संस्कृत मंत्रालय पायते डकरा जन नेशनल स्कॉलरशिप लगे सरायकला रेन बारिये सपेट किंग नील कुमार साहू चाउ संगीत ओंडो अभिजीत दीत तिकिंग चाउ सुसुन लगे किंग सलाह जाना रांची लो राज रिया एसो पूरे जिला रे एसो केड़े ते गामा केड़ते होड़ को जेटे लो लोते राहत को नाम केड़ा रांची रिया बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रे 25 मई जोंग होबालेन 29 नेशनल सीनियर फेडरेशन कप बदाबादी नामा राष्ट्रीय ओंडो मीट रिकॉर्ड लोते छबा जाना निना लोते आकाशवाणी रांची ते मी हाटोरिया खबर छबा जाना जोहार
3: नुआ दो आकाशवाणी रिया रांची केंद्र कना संताली ते हप्ताकीय खबर साउते इंगे सलमा टुडू सर्वोच्च न्यायालय दो दिसोम रिया सनाम उच्च न्यायालय को लगतियाना आंदे एमाकात कोआ शीर्ष अदालत दोय मेन कदा जे जहान बाबत तेगे ओना रिया फैसला रुखिय दोहय रिया पे चांदो भितिर ते ओना आंजम हुयुआ नुंका बांग हुयुक खान ओना केस एटा ठेन उचड़ रिया को कोया कदा केंद्र सरकार दो घुसपेट और एटा बाबत ते हुयुक कान होड लेखा बनोदल खन बांचाव लगी ते मित मारांग समिति बेरेद अकादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो नुआ राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता लगी मारांग बतोराना मेन कते मित ठौक हकान ओक्तो भितिर रे नुआ सेदाय खन हेज अकान एटकेटोणे रिया सोलहे पांजाय रिया कथाय गोटा हकना
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो मेना कदा जे सरकार दो सनाम अदिम सावता को समान नागरिक संहिता खन बारे लगी ते मित मारांग कथाय ठौको हकदा नुआ रेना आसल जोस दो कना अदिम कुआ हक ए दरी बांचाव दो होय नवा दिल्ली रे हुयन जनजातीय सांस्कृतिक समागम रे उने दो भगवान बिरसा मुंडा बाबत कथा होय लई सदर कदा सिरा मंत्री हेमंत सोरेन दो रांची रे मेना अड्रे हाउस रे आदि निवास डिजिटल एप ए तो होबा कदा नोंकान ओक्तो रे उने दो मेन केदा जे नुआ एप दो दिसोम जकातरिन आदिम सावता को मिठन जोपड़ा दोहो साउ साउते उनकुआ अरिचली परसी रायरित अर कमी कसनी को रुखिया दोहे रे कमिया केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान दो प्रधानमंत्री आवास योजना दारायते मित मारांग फैसला हतावा कदा उनी दो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दारायते झारखंड पोनोत सौते दिसम जकात रिया गेलबार पोनोत लगित गेल हजार करोड़ खोन हो बढ़ती टकाय एमा कदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो राष्ट्रपति भवन रे तुगे तुरुई होड़ को पद्म पुरस्कार ते मनकेत कुआ पुलु धाप रे उने दो बारिया पद्म विभूषण तुरुई पद्म भूषण आर मुगे इरल होड़ को पद्मश्री एमात कुआ नियधाव दो पद्म पुरस्कार सूची रे बोंगा तला हकान दिसोम गुरु शिवु सोरेन दो पद्म भूषण एम रिया कथाय मेना कदा सिरा मंत्री हेमंत सोरेन दो पोनोत सरकार भेगार भेगार हुद्दे रिया कागज को बाबत दुपुड़ूब एहबा कदा 11 जून हबीज चला नुआ दुपुड़ूब दाराय ते सिरा मंत्री दो आज निजे नेल काते नुआ रेना बुनियाद कथा कोय पानते नामेत कना पोनोत सरकार दो आजरिन कमिया कुआ महंगाई भत्ता रे 2% बढ़तिया कदाय 27 मई रे हुयन पोनोत कैबिनेट दुपुड़ूब रे नुआ कथा दो को हैं सरी केदा दुपुड़ूब रे पुलु चिकित्सा लगित ते 75% अबुआ दवाखाना झीज आर निस होड़ कुआ खबर एमो को सिर्फ आर पे गेल आरे कथा रे हैं सरी केदा पोनोत रे मुलुज निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार दो मतदाता ठेन खोन वोटर लिस्ट मैपिंग अभियान साव जोपड़ाओ लगित ए मेताहकत कोआ उनी दो मेन के दाजे तकनीकी ते एटकेटोने हुयु कान रिया दो आलोपे बोतरो आ जहां या नुतुम ऑनलाइन रे बाय नामो कना उनी लगित दो बीएलओ ओडा ओडा चलाव कते मैपिंग रेना कमी को पुरवा धनबाद रिया सदर अस्पताल रे युवा मैत्री दो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम रे दिसो जकात रे तेसारा ठावे हा मेटाकादा नोआ सिर्फ दो जुवन को स्वास्थ्य बाबत नफाय सुविधा एमो लगित को एमाकात कोआ रांची पुलिस दो नक्सली गणठन पीएलएफआई रे मुड़ होड़ आर 1,00,000 टाका सिर्फ हने उग्रवादी अमृत होरो दो को साफ आका दिया उनते लातेहार पुलिस दो जेजेएमपी रे 3,00,000 सिर्फ हने सब जोनल कमांडर शिवनारायण भुइया साउते बारिया उग्रवादी को साफ आकात किना देवघर एम्स दो तेहेन इरलाना थापन महा अडी रस्क सला ए मनाव केदा नोआ हेलमेल रे मारांग पेड़ा केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी आर सांसद निशिकांत दुबे हो सेलेद ए तहे कना नोआ साउते गे तेहेन हप्ता किय संताली खबर दो नडे गिन मुचत किया जोहार
4: आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार क्रमशः नागपुरी उराव मुंडारी हो और संताली भाषाओं में ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आइए अब सुनते हैं समाचार ध्वनि चित्र
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र

0: इस अंक में जनजातीय सांस्कृतिक समागम और केंद्र सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला परिसर में भव्य जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से 550 से अधिक जनजातियों के लगभग 1.5 लाख से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मौके पर उन्होंने झारखंड के वीर क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के बाद सबसे पहला यह जनजातीय आंदोलन है जो पूरे देश को एक करता है। यह समागम जनजातियों के महाकुंभ के रूप में आने वाले अनेक वर्षों तक जाना जाएगा।
1: देश के सुदूर अंचलों से पारंपरिक वेशभूषा में अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ, अपनी संस्कृति के गीत के गानों के साथ जब आप आए हैं, मैं निश्चित रूप से कहता हूं, मैंने तो कभी जीवन में भगवान बिरसा मुंडा को नहीं देखा है, परंतु आज मेरे सामने भगवान बिरसा मुंडा साक्षात उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। और ये वर्ष भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती का वर्ष है। और आज सिद्धू कानू, बाबा तिलका मांझी, वीरांगना रानी दुर्गावती, शहीद वीर नारायण सिंह, जननायक टाटिया भील, कोमाराम भील, गोविंद गुरु और मणिपुर नागालैंड की रानी माँ के सभी वंशज आज यहाँ उपस्थित है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जिस दिन हम मिल रहे हैं वो वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का वर्ष है। उल गुलान आंदोलन, जिसने अंग्रेजों को जमीन बताने का काम किया था, उस वक्त कोई संचार के सुविधा न होने के बावजूद झारखंड से लेकर गुजरात तक और पूरे भारत में जनजातियों को, यही हमारा देश है, हमारा धर्म ही सच्चा धर्म है और हमारे जंगल पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता। ये संदेश भगवान बिरसा मुंडा ने पहुंचाया। ये जो जल है, जंगल है, पहाड़ी है, ये हमारे वनवासियों भाइयों के लिए आस्था का केंद्र, आजीविका का साधन भी है और उनकी अस्मिता और संस्कृति का संरक्षण करने वाला अभेद किला भी।
0: केंद्रीय गृह मंत्री ने जनजाति समागम के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, अधिकार और विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने जनजातीय समाज के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए जनजातीय कल्याण का बजट बढ़ाकर 1,50,000 करोड़ रुपए कर दिया है।
1: अति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का। यह बताता है कि हम जनजातियों के कल्याण को समर्पित सरकार, देश की आजादी के 76 साल तक देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति पद पर कभी जनजाति का कोई व्यक्ति बैठा नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब संथाल परिवार से आ रही द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर समग्र ट्राइबल समाज का कल्याण करने, अटल जी के समय में ही झारखंड और छत्तीसगढ़ जनजाति बहुल राज्य बने और आज हमारे यहाँ उड़ीसा में भी जनजाति का मुख्यमंत्री है और छत्तीसगढ़ में भी जनजाति का मुख्यमंत्री है। ये हमारी पॉलिसी को बताता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के साथ अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत ने विकास, आत्मनिर्भरता, गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव देखे हैं।
2: मंत्री जी का लक्ष्य 2014 के बाद से एक लक्ष्य उन्होंने तय किया है, 2047 तक देश को उचित भारत बनाना है और उस लक्ष्य के साथ जो शुरुआत अगर महिला बाल विकास विभाग की हम करें तो जो बेसिक जरूरत की चीजें थी सबसे पहले तो उन्होंने इसकी शुरुआत की कि महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त, उसके साथ साथ अब महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण। तो निश्चित रूप से इस लक्ष्य के साथ जो बात हुई 12 वर्षों में, विगत 12 वर्षों में अगर हम लोग देखें तो अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से महिला बाल विकास विभाग की अगर बात करें, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.2, तो अलग अलग इंडिकेटर के माध्यम से कार्य कर रही है और निश्चित रूप से राज्य सरकार के साथ मिलकर समय समय पर समीक्षा करके जो भी हमारे इंडिकेटर्स हैं हम राज्य को इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, राज्य के साथ बैठक भी करते हैं और ताकि हम अलग अलग जो विभाग के जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को सही दिशा में और सही लाभार्थी तक पहुंचा सके, चाहे गर्भवती माता हो, धात्री माता हो या फिर किशोरियां, तो उन सबके लिए जो योजनाएं हैं उसका लाभ उन तक मिल सके, ये हम प्रयास करते हैं।
0: केंद्र सरकार ने इन 12 वर्षों में देश के नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की हैं। गुमला के जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक रंजन ने बताया कि जनजातियों के विकास के लिए

0: कई योजनाएं चलाई जा रही है। इन्हीं में शामिल है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान।
1: हम बताना चाहेंगे कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना अभियान के तहत हमारे जिले में 5 योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 2 विद्यालयों में, एक हमारा जो प्राइमरी स्कूल है मिडिल स्कूल चौरापाट अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका विद्यालय चौरापाट एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय डोकापाट, ये दोनों विद्यालयों में 6 SER मतलब 6 अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण और दोनों विद्यालयों में एक एक 50 बेड का छात्रावास निर्माण का योजना स्वीकृत है और वहां पर काम चल रहा है। उसके अतिरिक्त ट्राइबल मल्टीपर्पज मार्केटिंग सेंटर जो चंदाली स्थित मुख्य सड़क जो हमारे गुमला का है, जो कि एडजेसेंट है हमारे गुमला का जो समाहरणालय नया समाहरणालय है वहां से, वहां पर करीब करीब हमारा उसमें ढलाई तक का कार्य भी पूर्ण हो चुका है, जिसमें 10 दुकान का प्रावधान, सभी योजनाएं हमारे यहाँ संचालित।
0: साहिबगंज जिला में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जिले के कुल 336 गांवों की समग्र विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। इस विषय पर साहिबगंज के समेकित जनजातीय विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक संजय कुमार दास ने बताया,
2: साहिबगंज जिला अंतर्गत जो है 336 गांवों में धरती आबा योजना का शुभारंभ किया गया था और प्रत्येक गांव में ग्राम सभा जा जाकर के किया गया था और उनकी जो भी मूलभूत चीजें थी उनको एक एक करके बिंदुवार नोट करते हुए हम लोगों ने प्लान बनाया। प्लान के तहत हम लोग अभी विभाग इसको स्वीकृति के लिए कुछ भेजे हैं, विभाग के तरफ से कुछ योजनाएं हैं जो स्वीकृत होकर के होके आ गई है, जिस पर हम लोग काम करा रहे हैं। आज के तिथि में हमारे पास 14 ऐसे मल्टीपर्पज बिल्डिंगें बनी है पीवीटी परिवार में, ताकि उस बिल्डिंग से वहाँ के जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं या अन्य तरह के कार्य करने हैं, जैसे वहाँ आंगनबाड़ी नहीं चल रहे हैं तो उस भवन में आंगनबाड़ी चलाया जा सकता है, या NM वगैरह आती है तो बिल्डिंग में NM का कार्य किया जाता है, या JSLPS की दीदी लोग हैं वो JSLPS भी की दीदी लोग वहाँ ट्रेनिंग वगैरह कैंप किया जाता है। इतना ही नहीं, वहाँ के जो ग्रामीण हैं जो अपना किसी भी तरह का बैठक हो, ग्राम सभा करना हो या गांव के विकास के लिए किसी भी तरह का प्लानिंग का कार्य करना हो, योजना का निर्माण करना है, उस मल्टीपर्पज बिल्डिंग में बैठ करके अपने उन कार्यों को संपादित कर सकते हैं। इसके अलावा धरती आवा योजना के तहत हमारे कई पीवीटी विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण का स्वीकृति प्राप्त हुआ है और आज वो लगभग फाइनल की स्थिति में है और इस तरह से है पूरे धरती आवा योजना के तहत हम लोग सभी 200 पीवीटी गांवों को कवरेज करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ हमारी योजना स्वीकृति होकर के आ गई, कुछ हमारी पाइपलाइन में है और जैसे ही विभाग से हमें स्वीकृति प्राप्त होते ही हम लोग सभी गाँवों में मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने के लिए हम लोग तत्पर हैं, कृतज्ञ हैं।
0: केंद्र सरकार के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न संस्थानों द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण, मुद्रा लोन, कृषि, कुटीर एवं लघु उद्योग अधिष्ठापन में भी सहायता दिया जा रहा है, जिससे महिलाएं स्वावलंबन की ओर अग्रसरित हुई है।
3: मैं तालधारी ब्लॉक से आए हूँ और साथ में ब्यूटी पार्लर सीखने के लिए आए हैं। हम लोग पहाड़ी इलाके से आए हैं और हम लोग के लिए ये बहुत नया चीज है कि ब्यूटी पार्लर सीख रहे हैं, कुछ नया घर में जा करके हम लोग के लिए बहुत ही जरूरी है। इससे हम लोग पैसा कमा सकते हैं, घर परिवार चला सकते हैं अच्छा से।
4: ग्रेसी माल्टो, मैं आई हूँ मंडरो प्रखंड से, या मैंने सीखने आई हूँ कि मतलब खेती के बारे में, खेती के विषय में मैं सीखने आई हूँ कि मैं गांव जाके इस विषय को मतलब गांव में अपना जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उसको मतलब सिखा के समझा के हम लोग उससे लाभ लेने के लिए हम लोग ने आए हैं कि मतलब सीख के मैं गांव में अपना पूरा जो खेती पहाड़ में जो हम लोग का गंगरा होता है, मकई होता है, बजरा होता है और सूत्री होता है, राहड़ होता है, उसको मैं पहाड़ में सिखाने समझाने के लिए, मैं सीखने के लिए यहाँ मैं आई हूँ।
5: ये हम जीवाबाड़ी के रहने वाले हैं, ये मेरा खांचा हाट हुआ अपना, मतलब सरकार द्वारा से खुला हुआ है, यहाँ हम जॉब कर रहे हैं और ये RCT जो लोहंडा RCT से हम वहाँ ब्यूटिशियन कोर्स किए हुए हैं हाल फिलहाल में। अब कुछ मतलब क्या सीखने के बाद हम अपना खोलने जा रहे हैं और बहुत जल्दी खोल लेंगे। दल के द्वारा हम लोग को मतलब कि दिया गया है

0: मतलब फ्री क्वेश्चन सीखे हुए हैं और हम लोग मतलब बहुत जल्दी ही खुलने वाले हैं।
1: वहीं राज्य के विभिन्न जिलों से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों ने कहा कि इस योजना ने उनकी जीवन शैली बदल दी है।
2: मेरा नाम फुलकुमारी देवी है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उज्ज्वल कार्ड जो हम लोगों को मिला है उससे बहुत ही सुविधाएं मिली है। हम लोग बरसात में बहुत दिक्कत झेलते थे, उससे अभी मुक्ति मिल गई, धुआं धक्कड़ से दूर हो गए। मोदी जी को 12 साल का कार्यक्रम हो गया, उसके लिए भी उनको बधाई देते हैं।
3: बहुत सारे वो लोग योजना निकलाए मोदी जी, उनसे हमको लाभ मिला है उज्ज्वला योजना का। उज्ज्वला योजना बहुत ही हम लोग को लाभदायक हो रहा है। हम लोग लकड़ी झूरी से बाज हो गए हैं और अच्छा से बच्चा लोग को स्कूल भेज रहे हैं, अच्छा से खाना पीना टाइम से दे सक रहे हैं, हम लोग भी खा के अपना काम जा सक रहे हैं। इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ।
4: मेरा नाम है रेखा देवी और मैं मोदी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम लोग को उज्ज्वला योजना दे के धुआं मुक्त जीवन जीने का साहस दिया। से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा है, हमारे बच्चों का भी स्वास्थ्य अच्छा है और पहले जैसा जीवन हम लोग को जीना नहीं पड़ रहा है और इससे हमारे घर परिवार भी बहुत खुश है उज्ज्वला योजना से।
1: और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात्रि 7:45 प्रसारित किया जाता है। संपादक महविश रहमान, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता कामिनी।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब पेश है रजनी गंधा। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में। मैं हूँ मीनाक्षी। तुम्हारी एक आवाज पे हम दौड़े चले आएंगे। शर्त ये है कि लहजे में बेकरारी होनी चाहिए।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
1: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
1: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
1: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
1: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
1: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
1: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
5: एक बार फिर से स्वागत आप सभी श्रोताओं का रजनी गंधा में। छूकर यूं बहक जाने को नहीं, उतरकर रूह में महक जाने को इश्क कहते हैं।

तुम किताबे जिंदगी का एक पन्ना खाली रखना, कभी जो याद आऊं मैं तो मेरा नाम लिख देना।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 प्रमुख निष्कर्ष, चुनौतियां और संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रही है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक। कार्यक्रम का संचालन कर रही है सोनू सूद।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 कल जारी किया, जिसमें स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं में प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। क्या है इस सर्वेक्षण का महत्व, क्या है इसके प्रमुख पहलू और क्या है आगे की संभावनाएं, इन सब पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव सुश्री आराधना पटनायक। आराधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में।
3: सभी को मेरा नमस्कार।
2: जी आराधना जी, ये जो सर्वेक्षण जारी हुआ है, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जिसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या NFHS कहा जाता है, इसका उद्देश्य क्या है और जो NFHS 6/2023-24 के आंकड़ों के आधार पर जो जारी हुआ है कल, उसके प्रमुख निष्कर्ष क्या है।
3: ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण अभी जारी हुआ है, ये 2023-24 के लिए जारी हुआ है, ये 6th सर्वेक्षण है। ये सर्वेक्षण लगभग 6.79 लाख घरों को कवर किया है और इसमें लगभग 7.16 लाख महिलाएं और लगभग 1 लाख पुरुषों को कवर किया गया है। ये पूरे देश में ये सर्वेक्षण हुआ है और इस सर्वेक्षण के माध्यम से मुख्य रूप से हम कई सारे स्वास्थ्य के जो मानक हैं उनमें क्या प्रगति हुई है, उस पर हम मुख्य रूप से ये सर्वेक्षण करते हैं। चाहे स्वास्थ्य की हम बात करें, चाहे पोषण की बात करें, महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें, परिवार नियोजन की बात करें, बच्चों के स्वास्थ्य की बात करें, तो ये सभी चीजें इस सर्वेक्षण में कवर करते हैं। इस बार जो ये सर्वेक्षण हुआ है, तो इसमें मुख्य रूप से जो हमें सबसे अच्छी उपलब्धि मिली है वो है कि हमारे जो प्रसव अस्पतालों में जो होता है, वो प्रसव हमारा लगभग 88.6 से बढ़कर 90.6 हो गया है। फिर जो बच्चों का टीकाकरण होता है, वो लगभग 96%

0: ऊपर चल रहा है। और
1: जी
0: सबसे अच्छी बात इसमें है कि लगभग 95.6% बच्चों को जितने भी टीकाकरण जो लगते हैं वो सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो मुझे लगती है उपलब्धि है, हमारे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र लगभग 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर पूरे देश में फैले हुए हैं, जहां हम ये सुविधाएं देते हैं टीकाकरण का, और जो हमारी ANM बहनें बच्चों का टीकाकरण करती है। तो ये एक बहुत अच्छा हमें इसमें उत्साहवर्धक हमें सर्वेक्षण में ये रिपोर्ट आया है। दूसरा एक और है ANC, जो गर्भवती माताओं का प्रसव पूर्व जांच जो किया जाता है वो करीब 92% से बढ़कर 95.9 वो हो गया है। तो
1: जी
0: ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस है हमारा। और बच्चों का जो टीकाकरण करते हैं तो जो पूर्ण टीकाकरण वो 83.8% से बढ़कर 87.1% हो गया है। तो यहाँ भी बढ़ोतरी हुई है। पोस्ट नेटल केयर, जो प्रसव के पश्चात जो माताओं को सुविधा देनी है, उसमें बढ़ोतरी हुई है 79.1% से 85.3% वो बढ़ा है। तो
1: जी
0: इस तरह काफी सारे उत्साहवर्धक हमारे जो इंडिकेटर्स आए हैं, सभी चाहे वो मातृत्व की बात करें या शिशु की बात करें, सभी में ये बढ़ोतरी हुई है। और एक और मैं आंकड़ा भी बताना चाहूंगी, जो
1: जी
0: हमारे गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों में जो जो एक ये समस्या रहती है उसमें काफी कमी आई है।
1: जी
0: तो जो स्टंटिंग और वेस्टिंग, हम सीवियर वेस्टिंग की बात करते हैं, इसमें काफी कमी आई है। और हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज काफी बढ़ा है, 41% से बढ़कर वो 60.2% हुआ है। तो इसमें जो हमारा आयुष्मान भारत PMJ है, PM जन आरोग्य योजना, उसकी एक अहम भूमिका नजर आ रही है।
1: सो जैसा आपने मेंशन किया आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऐसी और भी इसके जैसी जो प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं हैं, उन्होंने आपको लगता है कि विशेष रूप से कमजोर आबादी के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है?
0: हाँ, जो पहला मैंने कहा कि सबसे पहले जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के रूप में 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया था,
1: जी
0: उसका मुख्य उद्देश्य था कि हम स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों के समीप ले जाएं। और उसमें कई सारे पैकेजेस इसमें जोड़े गए थे। पहले हम लोग मुख्य रूप से मातृत्व और शिशु पर ही, स्वास्थ्य पर ही ध्यान देते थे। अब वृद्ध लोगों पर, फिर जो बढ़ते हुए NCDs हैं उस पर भी ध्यान दे रहे हैं, ओरल हेल्थ, डेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, जेरियाट्रिक केयर, पैलेटिव केयर, ऐसे और 6 पैकेजेस जोड़े गए। तो अभी कुल मिला के 12 पैकेजेस ये सभी 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में दिए जाते हैं। और
1: सभी आयु वर्ग
0: मुझे
1: के लिए
0: खुशी है बताने में कि ये जो टोटल फुटफॉल की बात अगर हम करें 2018 से लेकर अब तक, लगभग 522.41 करोड़ लोगों ने इसका लाभ लिया है। और जब हम सेकेंडरी टर्शरी हेल्थ केयर की बात करें तो वहां पर जो हमारा आयुष्मान भारत PMJ आ गया, उसके माध्यम से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं। जो 5 लाख अगर कोई भी बीमारी है और उसका इलाज वो कराना चाह रहे हैं तो उसमें आयुष्मान कार्ड जो दिए जाते हैं, लगभग 44 करोड़ कार्ड दिए गए हैं और लगभग 12 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशंस ऑथराइज हुए हैं। और जो ट्रीटमेंट हुआ है अभी तक वो लगभग 1.85 लाख करोड़ का हमारे लगभग 36,000 पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के माध्यम से दिया गया है। और अगर हम जो वल्नरेबल पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें जैसे हमारे कई सारे ऐसे कार्यक्रम है, जैसे PM जनमन, जो हमारे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, PVTGs, उन तक पहुंचने के लिए हम लोग मोबाइल मेडिकल यूनिट्स चलाते हैं, जिसके माध्यम से हम उनके लिए कैंप्स करके उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, विशेष रूप से ट्राइबल पॉपुलेशन को ध्यान देते हुए। जहां भी अगर हमारे स्वास्थ्य केंद्र 5 किलोमीटर के अंदर में नहीं है क्योंकि वहां आबादी बहुत कम है, तो वैसे जगह भी हम मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से यही जो 12 पैकेजेस की मैं बात कर रही थी वो हम उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा हम हर महीने आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित करते हैं। ये शिविर हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों में होता है, चाहे वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो, चाहे हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे जिला अस्पताल हो। और वहाँ पर स्पेशलिस्ट जाते हैं, जो CHC जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस से स्पेशलिस्ट जाते हैं और वो विशेषज्ञ सेवाएं देते हैं। और उसी तरह जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब सेंटर्स हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र, जहाँ पर सिर्फ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO है, वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर्स जाते हैं, तो डॉक्टर्स जाते हैं सेवाएं देने के लिए। इसके अलावा हमारा टेली कंसल्टेशन भी होता है, जिसके माध्यम से डॉक्टर स्पेशलिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर कोई मरीज ऐसे आए हैं जिनको वो स्पेशलिस्ट सेवा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दवा और डायग्नोस्टिक, जो मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स होते हैं, उसमें फ्री ड्रग इनिशिएटिव

0: इनिशिएटिव हमारा प्रोग्राम है और फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस इनिशिएटिव प्रोग्राम है, सरकारी अस्पतालों में वो मुफ्त दिया जाता है।
1: तो ये जो इतना व्यापक आपने पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया जो हमारे देश में उपलब्ध है, और जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से जनधन आधार मोबाइल के बल पर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो भी बहुत बढ़ गया है, लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई है आम आदमियों के पास, आपको लगता है कि प्रौद्योगिकी का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है? ये जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध भी है और उसके लिए जो पहुंच है वो भी आसान है एक आम नागरिक के लिए, इन दोनों चीजों में टेक्नोलॉजी का ओवरऑल क्या रोल है? ये जो हम पब्लिक हेल्थ इकोसिस्टम में इतना भारी एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं,
0: ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इसमें रोल है। अभी जैसे मैं बता रही थी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम जो सेवाएं देते हैं 12 पैकेजेस, अगर वहां पर अगर किसी को कोई स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन की आवश्यकता है तो ई संजीवनी हमारा टेली कंसल्टेशन मॉड्यूल है, इसके माध्यम से आप स्पेशलिस्ट से सेवाएं ले सकते हैं। फिर अगर आपको मानसिक कोई बीमारी है या मानसिक आपको कोई परेशानी है तो हमारा एक टेली मानस कार्यक्रम है जिसमें काउंसलर से डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर भी मैं बताना चाहूंगी, 144416, ये टोल फ्री नंबर है, कोई भी डायल कर सकता है और हमारे करीब ऐसे 53 सेंटर्स हैं जहां पर स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, तो कोई भी अगर कनेक्ट करता है और उसको कोई भी मानसिक बीमारी है, अगर दवा की आवश्यकता है या कोई सुझाव की आवश्यकता है, परामर्श की आवश्यकता है, तो वो उनसे बात कर सकते हैं, काउंसलर्स बात करेंगे और फिर वो उन्हें साइकेट्रिस्ट से जोड़ेंगे। उसके साथ साथ जो बता रही थी हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के जो मिशन है हमारा, उसके एनएचएम के माध्यम से जो हम विभिन्न कार्यक्रम चलाते हैं, चाहे एमएमआर कम करने की बात हो या अंडर 5 मोर्टेलिटी घटाने की बात हो या डिजीज एलिमिनेशन की, हर एक में हमारा पोर्टल है जिसमें हम ट्रैक करते हैं, एक एक मरीज को ट्रैक करते हैं। तो जैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगी, जैसे हमारा यूविन पोर्टल है तो बच्चों का टीकाकरण इसमें पूरा ट्रैक होता है, तो हर बच्चे का जिस दिन ड्यू उसका डेट है उससे पहले माँ को वो मैसेज जाता है कि आप अपने बच्चे को निकटतम स्वास्थ्य उपकेंद्र में ले आइए टीकाकरण करने के लिए। अगर वो मिस कर गई तो उसको फिर जाता है कि भाई आप अपने बच्चे को लेकर नहीं आए, अगला ये डेट है उस पर जरूर आए, तो ये रिमाइंडर भी जाता है। वो घर बैठे बैठे अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकती है बच्चे का। तो इस तरह कई सारे हमारे पोर्टल से, एनसीडी के लिए एक अलग पोर्टल है जिसके माध्यम से हम जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, ओरल ब्रेस्ट सर्वाइकल कैंसर, ये सभी की स्क्रीनिंग हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर में करते हैं। उनका फिर ट्रैकिंग होता है कि उनको वो रेफर किए गए, फिर ट्रीटमेंट चालू हुआ, अंडर कंट्रोल है कि नहीं। टीबी का निक्षय पोर्टल है, तो इस तरह हर एक प्रोग्राम के लिए, लेप्रेसी के लिए निकुष्ट पोर्टल है, तो हर एक प्रोग्राम के लिए हमारा एक पोर्टल है जिसके माध्यम से हम ट्रैक करते हैं। और सबसे अच्छी बात और खुशी की बात मैं बताना चाहूंगी कि अभी हाल ही में हम लोगों ने इन सभी पोर्टल्स का भी इंटीग्रेशन करके एक स्वस्थ भारत पोर्टल लॉन्च किया है और उसी के साथ साथ उसका स्वस्थ भारत ऐप भी लॉन्च किया है। इसके माध्यम से हम सभी के बीच में जो हम समन्वय स्थापित करना चाह रहे हैं कि मरीज तो एक है, उसको तीन प्रकार की बीमारियां हो सकती है, लेकिन पहले हम अलग अलग पोर्टल से ट्रैक नहीं कर पाते थे। अब इस स्वस्थ भारत पोर्टल से अगर उदाहरण स्वरूप अगर कोई गर्भवती माता है वो अपना चेकअप के लिए गई, लेकिन पहले वो 2 महीने पहले गई थी और डायबिटिक पाई गई थी, तो ये हमें बता देगा कि अब वो आई है गर्भवती माँ अपने चेकअप के लिए, लेकिन वो महिला पहले से डायबिटिक है, तो ये जानकारी प्राप्त करके फिर डॉक्टर उनको फिर विशेष परामर्श दे सकते हैं। तो ये डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से हम जो कहते हैं ना लास्ट माइल तक पहुंचना, आखिरी घर तक पहुंचना और आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, वो हम कर पा रहे हैं।
1: मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे देश में प्रमुख उभरती स्वास्थ्य चुनौतियां क्या है?
0: इस सर्वे में काफी अच्छी प्रगति हुई, लेकिन एक जो सबसे बड़ी चुनौती आज के दिन में हमारे लिए और इस सर्वे में भी ये आया है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज है, ये व्यक्ति के खुद के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का एक बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो अगर व्यक्ति स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हो और वो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं करे, जैसे हम कहते हैं एक्सरसाइज नियमित रूप से करिए, अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए, इस सर्वे में भी आया है कि एनसीडीज बढ़े हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन की बात करें, हाइपरटेंशन वैसे थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन डायबिटीज काफी बढ़ा है, एडल्ट ओबेसिटी बढ़ा है, तो ये एक दिखा रहा है कि अब हमें इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा जो एनपीएनसीडी प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत हम लोग सभी 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हाइपरटेंशन, डायबिटीज और 3 प्रकार के जो कैंसर है, जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स है, ओरल ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर, इसका हम नियमित रूप से स्क्रीनिंग करते हैं और 2018 से ये स्क्रीनिंग प्रारंभ हुआ, तब से लेकर अब तक हम लोग लगभग 42 करोड़ हाइपरटेंशन का स्क्रीनिंग कर चुके हैं।

0: और डायबिटीज का 42 करोड़ लोगों का कर चुके हैं, लगभग 35 करोड़ से ऊपर लोगों का ओरल कैंसर का स्क्रीनिंग कर चुके हैं, लगभग 16 करोड़ से ऊपर ब्रेस्ट कैंसर की महिलाओं का स्क्रीनिंग हो गया है और सर्वाइकल कैंसर का भी 9 करोड़ से ऊपर का स्क्रीनिंग कर लिए हैं। हमारे लिए यही चुनौती है कि स्क्रीनिंग तो हम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम उनका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, वो भी सरकारी अस्पतालों में फ्री है, प्लस पीएमजे के तहत अगर आप एम्पैनल हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां भी ट्रीटमेंट आपका फ्री है। जो खुद को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है, एक्सरसाइज नियमित रूप से करना है, खाने पीने पर ध्यान देना है, कम तेल का उपयोग करना है, कम नमक का उपयोग करना है, कम चीनी का उपयोग करना है, ये इसको आम लोगों को इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है। एक और भी हम लोग करते हैं, ईट राइट कैंपेन हमारा FSSAI के द्वारा चलाया जा रहा है, इसके माध्यम से हम लोग स्कूल्स कॉलेजेस में काफी अवेयरनेस कर रहे हैं। फिर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम लोग महीने में 10 दिन वेलनेस सेशंस करते हैं जिसमें योगा जुम्बा ये सब भी किया जाता है, उसमें भी लोगों को जागरूक किया जाता है। हर व्यक्ति को खुद के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। आज के दिन में चुनौती, हर कोई अगर खुद को स्वस्थ रखने के लिए खुद मेहनत करे तो सरकारी तंत्र पर बोझ काफी कम होगा। सरकार लगातार प्रयासरत है इसमें कार्य करने में और प्रिवेंशन पर ध्यान देने में। आशा बहनें उनको ट्रेनिंग दिया गया है और सभी जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी है सभी को ट्रेनिंग दिया गया है जागरूक करने के लिए, लेकिन लोगों को भी खुद आगे आना होगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना होगा।
1: आराधना जी, आपने इतनी समग्र चर्चा की और जो हमारा देश का हेल्थ इको सिस्टम है उसमें क्या प्रगति हो रही है उसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, आगे की संभावनाओं पर प्रकाश डाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 प्रमुख निष्कर्ष, चुनौतियां और संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया, बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
4: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डीके शिवकुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डीके शिवकुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य जून 3 तारीख को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
3: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ टीवी के द्वारा कथित तौर पर चार विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ

0: कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से इस्तीफा देने के तुरंत बाद टीवीके में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए टीवीके सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वयक की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
2: सन 2014 से पहले केवल यहां पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
3: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है।
2: As far as Operation Sindoor is concerned,
3: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर

पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 20 overs, Freya Kemp was the highest run scorer with 39 not out of just 13 deliveries. For India, Sri Charani took 3 wickets. Indian team is currently leading the series 1-0 after a commanding 38-run victory in the opening match in Chelmsford on Thursday. Indian wrestlers delivered an impressive performance at the Asian Under-17 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam today, securing several medals across different weight categories. In the 73-kilogram category, Garima claimed the gold medal, defeating Mongolia's Namun Sedseg Batbold 18-6. In the 43-kilogram category, Deeksha secured gold, beating Uzbekistan's Muklisa Masharipova 6-0. In the 49-kilogram category, Nikita settled for silver after a loss against China's Yuting Yuan. And now before we end the bulletin, the headlines once again. D.K. Shivakumar elected leader of Congress Legislature Party in Karnataka to take oath as Chief Minister on Wednesday. Month-long Khet Bachao Abhiyan to be launched from Monday to promote balanced and judicious use of fertilizers. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Man Ki Baat program on Akashvani tomorrow. IMD forecasts thunderstorms accompanied by hailstorms over East Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Vidarbh tomorrow. In badminton, Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to men's doubles final of Singapore Open. And in women's cricket, England set a target of 169 runs for India in the second T20 international in Bristol. That is all in the news at 9. Good night.
1: Adab, ye Akashvani hai. Khabron ke saath main Shagufta Yasmeen. कर्नाटक में कांग्रेस कानून साज पार्टी ने डीके शिवकुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है। वो बुध के रोज नए वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। कीमियावी खाद के मुतवाजन और सोच समझकर इस्तेमाल को फरोग देने की खातिर फिर से एक माह तवील खेत बचाओ अभियान शुरू होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्याल का इजहार करेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कल ओले गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। और खवातीन क्रिकेट में ब्रिस्टल में दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने 169 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। कर्नाटक में वजीर आला के ओहदे से सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद विधानसभा में कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग में डीके शिवकुमार को नया लीडर मुंतखब किया गया है। इस सिलसिले में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर की जानिब से पेश की गई करारदाद को अरकान असेंबली ने मंजूर कर लिया। इस तरह डीके शिवकुमार कर्नाटक के नए वजीर आला होंगे। जनाब शिवकुमार को लीडर मुंतखब करने से मुतालिक करारदाद मंजूर किए जाने के बाद मीटिंग में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने सभी कांग्रेस अरकान असेंबली को बाजाब्ता तौर पर इस फैसले से मुतला किया। बाद में नामानिगारों को जानकारी देते हुए जनाब वेणुगोपाल ने ऐलान किया कि पार्टी के अरकान असेंबली ने इत्तफाक राय से डीके शिवकुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है और वो सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए गवर्नर मौसूफ से मिलने जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि हलफबरदारी की तकरीब 3 जून को होगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: तनाव से भरे कुछ लम्हात के बाद ये खबर सामने आई कि डीके शिवकुमार को कांग्रेस कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। सुबुकदोश होने वाले वजीर आला सिद्धरमैया ने एक सतर पर मुश्तमिल ये करारदाद पेश की थी कि कानून साज पार्टी के लीडर के इंतखाब का मामला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके बाद एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विधानसभा में वजीर आला के चैम्बर में सिद्धरमैया के साथ अलहदा बातचीत की। इस तरह कानून साज पार्टी की मीटिंग में वक्फे के बाद जब ये दोबारा शुरू हुई तो डीके शिवकुमार को लीडर मुंतखब कर लिया गया। इसके बाद रियासत के गवर्नर ने डीके शिवकुमार को वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के लिए मदऊ किया। ریاست کے گورنر کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ ڈی کے شیو کمار اور ان کی

0: भी अंदरूने मुल्क ही तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस नजरिए से मुताबकत रखते हुए लोहम नामी एक नए स्टार्टअप ने कामयाबी के साथ ये अहम टेक्नोलॉजी तैयार की है।
1: सेल्स में बैटरी बनाने के लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन हो, चाहे किसी भी तरह का, आज की बड़ी मशीनों में सब जगह परमानेंट मैग्नेट्स और लिथियम की बैटरीज का उपयोग होता है। इसका प्रोडक्शन भारत में हो और बड़ी बात यह है कि इसकी टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप हो, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। इस विजन के तहत एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। म्यांमार के सदर ऊ मिन आउ लाइन भारत के 5 रोजा दौरे के तहत आज शाम नई दिल्ली पहुंचे हैं। खारजी उमूर के मरकजी वजीर ममलिकत कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। इससे कबल आज म्यांमार के सदर ने बिहार के गया का दौरा किया और वहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके हमरा मुख्तलिफ काबीनी वुजरा, सीनियर अहदेदारान और कारोबारी रहनुमाओं का एक आला सतही वफद भी है। म्यांमार के सदर का ओहदा संभालने के बाद यह उनका भारत का पहला दौरा है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज उनसे मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉ जयशंकर ने तवील मुद्दती बाहमी इश्तराक को मुस्तहकम करने के तई म्यांमार के सदर की मुस्बत सोच की सताइश की। उन्होंने कहा कि वो अमन, तरक्की और खुशहाली की खातिर शराकतदारी की पेशरफ के सिलसिले में वजीर आजम नरेन्द्र मोदी के साथ जनाब लाइन की मीटिंग के मुंतजर हैं। म्यांमार के सदर दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने की खातिर पीर के रोज वजीर आजम मोदी से बातचीत करेंगे। वो एक कारोबारी फोरम में भी शिरकत करेंगे। कौमी सेहत अथॉरिटी की जानिब से नाफिज करदा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मुल्क भर में 90 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स आभा का तारीखी संगे मील हासिल किया गया। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा कि एक मरबूत मुश्तरका तरीकेकार और शहरियों पर मरकूज डिजिटल सेहत इको निजाम की जानिब भारत के सफर में यह एक अहम पेशरफ्त है। वजारत ने कहा कि 2021 में 14 करोड़ से ज्यादा आभा अकाउंट्स की तादाद बढ़कर इस साल 90 करोड़ हो गई है। दिल्ली पुलिस के खसूसी शोबे ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई के जराइम पेशा ग्रोह के नेटवर्क के इशारे पर काम करने वाले 8 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिल्ली पुलिस के खसूसी शोबे के खसूसी पुलिस कमिश्नर अनिल शुक्ला ने बताया कि इन मुलजिमों को दिल्ली में अहम तनसीबात और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि इन मुलजिमों के कब्जे से हथियार और धमाकाखेज मादा जब्त किया गया है। जनाब शुक्ला ने बताया कि ये मुलजिम सरहद पार अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे। इन्हें दिल्ली, महाराष्ट्र और पुणे से गिरफ्तार किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में तेज बारिश की पेशगोई की है। अगले 2 दिन के दौरान ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, क्राइकल और मध्य प्रदेश में भी शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ खित्ते में कल आंधी और ज्वालाबारी के साथ बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और मगरबी बंगाल में गंगा की तराई वाले खित्ते में भी कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। केरलम में मॉनसून से पहले की बारिश के तनाजुर में भारतीय मौसमियात महकमे ने तिरुवनंतपुरम जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिले के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। कई इलाकों से पानी जमा हो जाने और ट्रैफिक में खलल पड़ने की इत्तला मिली है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा बिला रूकावट सफर के तजुर्बात को यकीनी बनाने के लिए डिजी यात्रा टीम को मुबारकबाद दी। जनाब नायडू ने कहा कि इस संगे मील से बिला रूकावट, पेपर के बगैर और किसी खास राब्ते के बगैर मुसाफिरों के बढ़ते एतमाद की अक्कासी होती है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों के डबल्स की भारतीय जोड़ी आज सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में आलमी नंबर 1 जनूबी कोरिया की जोड़ी स्यू स्यांग जाए और किम वोन हो को 21-19, 21-18 से हरा दिया। इससे कबल दुरुफ कपिला और तनिष्क।

क्रास्तो की मिक्स्ड डबल्स की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में जापान की जोड़ी से 16-21, 21-17, 13-21 से हार गई। खवातीन क्रिकेट में 3 T20 मैचों की सीरीज के तहत ब्रिस्टल में खेले जा रहे दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड की टीम ने भारत की जीत के लिए 169 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक खवातीन की भारतीय टीम ने 12 ओवर्स में 2 विकेट पर 95 रन बना लिए थे। इससे कबल इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इंग्लैंड ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए थे। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस कानून साज पार्टी ने डी के शिव कुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है। वो बुध के रोज नए वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। कीमियावी खाद के मुतवाजन और सोच समझकर इस्तेमाल को फरोग देने की खातिर पीर से एक माह तवील खेत बचाओ अभियान शुरू होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कल ज्वालाबारी और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। और खवातीन क्रिकेट में ब्रिस्टल में दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने 169 रन का निशाना रखा। अब से कुछ देर पहले तक खवातीन की भारतीय टीम ने 12 ओवर्स में 2 विकेट पर 95 रन बना लिए थे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में। पत्रिका जो हर बार लेकर आती है नए विषय, नए स्वर, नई सोच और नई उड़ान। आज का अंक खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, तो लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से, एक छापाखाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत सारा साहस। उदंत मारतंड। 30 मई 1826 को तत्कालीन कलकत्ता से शुरू हुए इस अखबार के संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कलकत्ते में वकालत करते थे। यही था हिंदी पत्रकारिता का पहला कदम और हम इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण ये अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मारतंड ने बोया वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई और आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता और पकी और फैली। और फिर आया डिजिटल युग, जहां हर हाथ में स्क्रीन है और हर इंसान एक संभावित पत्रकार है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को आखिर आगे कौन ले जाएगा? युवा पत्रकार कैसे दे इस समय के सवालों का जवाब, इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।

0: 15 अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई उसका मुख्य मकसद था देश को आजाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। तो ये तीन मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकारिता ने और भाषाई पत्रकारिता ने मुख्य रूप से देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं खास करके हिंदी पत्रकारिता में आजाद भारत में रेडियो का, आकाशवाणी का योगदान बहुत ज्यादा मानता हूं, क्योंकि खासकर जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत की जो आजादी है उसमें पत्रकारिता का और पत्रकारों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही, लेकिन उसमें भी विशेषकर जो युवा पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि आप शुरू से ही देखें, उदंत मार्तंड हो या फिर दैनिक समाचार सुधावर्षन या फिर बाद में एक उर्दू का अखबार आया आपको पैगाम आजादी, और कई भाषाई अखबार जैसे मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा शुरू किया, फिर बाद में महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजी में और गुजराती में, फिर बाद में हिंदी में पत्रकारिता की। तो उस पूरे दौर को यदि आप देखिए, यहाँ तक कि भगत सिंह तक ने भी जो है वो पत्रकारिता की, यशपाल ने पत्रकारिता की। पूरी आजादी की यदि यात्रा आप देखिए पत्रकारों की, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक खुद 25-26 साल के थे जब उन्होंने अपना अखबार निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप निकला तो उस समय वो मात्र 24 साल के थे, और भगत सिंह 23 साल की उम्र में 2-3 अखबारों के लिए लिखते थे, और प्रताप के लिए तो वो नाम बदल के लिखते थे। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार थे उसमें ज्यादातर यंग लोग ही रहे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की, नवजीवन की शुरुआत की, तो उन्होंने 30 से 35 साल के युवाओं को ही अपनी संपादकीय टीम में रखा। मेरा यह मानना है कि समय चाहे जैसे भी बदला हो और आगे भी बदलता रहेगा, पत्रकारिता के जो मूल्य हैं वो वही रहते हैं। मूल्य है सत्य को सामने लाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे आप कलम से लिखिए, मोबाइल से लिखिए। और मैं आपको याद रखना चाहूंगा कि बीच में स्वतंत्र भारत में एक आंदोलन भी हुआ, वो कहलाता है छात्र आंदोलन, जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, 1974-75 का जो आंदोलन है। तो आप यदि देखिएगा तो उसमें भी युवा पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और स्वाधीन भारत में दो और खास किस्म की पत्रकारिता शुरू हुई, एक खोजी पत्रकारिता जिसने कहीं न कहीं उन व्यवस्था पे भी जो है एक अंकुश लगाया जहां कुछ उसने देखा कि गलत हो रहा है। और दूसरी जो एक पत्रकारिता जो एक चरम रूप पे आई वो है विकास पत्रकारिता, विकास से जो व्यक्ति छूट गया उसको सामने लाना और मानवाधिकार की बात करना, पर्यावरण की बात करना, पर्यावरण के हितों की बात करना, ये 20वीं सदी की पत्रकारिता की सबसे एक विकसित सोच थी। खबर को एक खबर के रूप के साथ साथ विचार के रूप में भी प्रस्तुत करना, जनसंचार का क्षेत्र ये शुरू से युवाओं को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इसमें एक उनको कहीं न कहीं ग्लैमर भी नजर आता है। मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता आज की तारीख में भी एक लोक सेवा है। मुख्य मकसद वही है कि आप कलम से या शब्दों से या अपने विचारों से आपको समाज की, देश की और मानवता की सेवा करनी है। पत्रकारिता चाहे 18वीं सदी की हो, 19वीं सदी की हो, 20वीं सदी की हो, 21वीं सदी की हो, पत्रकारिता आज भी एक बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन है। मैं कहूंगा युवाओं को, आज भी युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आना चाहिए।
1: हरेंद्र प्रताप सिंह के विचारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि माध्यम बदलते हैं मगर जिम्मेदारी नहीं बदलती। और जब माध्यम की बात हो तो एक नाम जहन में हमेशा रहना चाहिए, आकाशवाणी। वो आवाज जो दशकों से घर घर तक पहुंचती रही, वो आवाज जो दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद की किरण बनती रही। आकाशवाणी के 90 साल के ऐतिहासिक पड़ाव पर इस अंक में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, युवा साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जिन्होंने रेडियो को सिर्फ एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा, समझा है और इसमें उनकी एक हिस्सेदारी भी रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 साल विरासत आज के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है।
2: मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है बल्कि वह मेरे बचपन की ध्वनि है। मेरे संस्कारों की लय है और मेरी चेतना का एक स्थायी संगीत। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, संचार के माध्यम बदल रहे हैं, आवाजें बदल रही हैं, तब भी मेरे भीतर कहीं एक रेडियो धीरे धीरे बजता रहता है। वही परिचित उद्घोष, वही शब्दों की गरिमा, वही ध्वनि का अनुशासन और वही आत्मीयता। शायद इसलिए मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ। टेलीविजन कब देखा था ये मुझे सचमुच याद नहीं। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई। मेरी माँ शिक्षिका है, लेकिन मेरे लिए वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि साहित्य, भाषा और संस्कृति से भी मेरा पहला परिचय कराने वाली हैं। उनका आकाशवाणी गोरखपुर से गहरा संबंध है। विवाह, निशा, निमंत्रण जैसे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। मैं अक्सर उनके साथ आकाशवाणी केंद्र भी जाया करता था। आज भी मुझे वह परिसर याद है, वहां का शांत वातावरण, स्टूडियो के बाहर लगी हुई लाल बत्ती, धीमी आवाज में होती बातचीत, स्क्रिप्ट के पन्नों की सरसराहट और प्रसारण शुरू होने से पहले का वह अद्भुत मौन। एक छोटे बच्चे के लिए वह संसार किसी जादुई लोक से कम नहीं था। आकाशवाणी गोरखपुर एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। वहां अनेक बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों का आना जाना था। मुझे याद है जब कोई वरिष्ठ कवि या कलाकार स्टूडियो में आते तो वहां का वातावरण एकदम बदल जाता। शब्दों के प्रति आदर और कला के प्रति समर्पण मैंने वहीं देखा। शायद वही संस्कार बाद में मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। बाल सभा के कई कार्यक्रमों में मुझे अवसर भी मिला। रेडियो पर अपनी आवाज सुनना उस समय बहुत रोमांचक था। रिकॉर्डिंग के दौरान माइक के सामने बैठना, सही उच्चारण का ध्यान रखना, शब्दों को स्पष्ट बोलना, ये सब मेरे लिए गतिविधियां ही नहीं थी बल्कि भाषा के प्रति एक अनुशासन का प्रशिक्षण भी था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना ही नहीं सिखाया बल्कि सुनना भी सिखाया, और सुनना वास्तव में सबसे बड़ी कला है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोता की कल्पना को जीवित रखता है, आपको अपने भीतर दृश्य रचने की स्वतंत्रता देता है। रेडियो सुनते हुए हम केवल श्रोता नहीं रहते, हम सह रचनाकार बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला, मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया। एक नया शहर, नया वातावरण, नए संघर्ष, लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहां विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने की एक नई दृष्टि। बाद में मुझे हिंदी वार्ता और संस्कृत वार्ता से भी जुड़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए प्रसारण ही नहीं बल्कि भाषा और विचार की साधना भी रही। आज सोशल मीडिया के समय में सूचनाएं बहुत हैं, लेकिन विश्वसनीयता कम होती जा रही है। ऐसे समय में आकाशवाणी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ शब्दों के पीछे उत्तरदायित्व है। कई बार मुझे लगता है कि रेडियो सुनना दरअसल अपने भीतर लौटना है, क्योंकि रेडियो हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से बचाकर शब्दों और ध्वनियों की एक शांत दुनिया में ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाशवाणी 90 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिनके माध्यम से मेरा परिचय इस संसार से हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा विनम्र प्रणाम है।
1: तो जैसा अभी विशाल पांडे ने कहा, आकाशवाणी ने हमेशा ही नई पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है, और आज की युवा पीढ़ी अभिव्यक्ति के नए नए रास्ते खोज रही है। कोई कैमरा उठाता है, कोई माइक थामता है, और कोई निकल पड़ता है अनजाने रास्तों पर, बस एक बैग, एक कैमरा और एक जज्बे के साथ। सफर को कंटेंट बनाना और कंटेंट को करियर बनाना, ये कमाल कर रहे हैं आज के ट्रैवल ब्लॉगर्स। जब घर के चार दीवारी को छोड़कर पहाड़, समंदर और अनजान शहर ही दफ्तर बन जाए तो जिंदगी

0: कुछ और ही रंग ले लेती है। आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे ही युवाओं से, श्वेता राठौर और सौरभ परमार, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। इनके लिए रास्ता ही मंजिल है और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। आइए सुनते हैं उनसे उनके रिस्क, उनके रील्स और उनके रास्तों के बाद जो इन्होंने खुद चुने हैं। रास्ते, रिस्क और रील्स, श्वेता राठौर और सौरभ परमार से बातचीत की मैंने, यानी नवोदिता और प्रांजल ने।
1: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक एआई और एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं, यूथ के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत क्वर्की स्पॉन्टेनियस कंटेंट से भरा हुआ है। आपके सोलो ट्रैवलिंग जर्नी में प्लानिंग से लेके उसका एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और आपका उसमें क्या प्रोसेस है?
2: जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बिल्कुल अनप्लान करते हैं, हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है। जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो खत्म है वहां पे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो। तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ रही है जगह, चलो चलते हैं। कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है, आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू। और आइटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे नेसेसिटी बन जाती है, आपको दिखाना है वीजा ऑफिसर को कि आइटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें। और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है, बेवजह रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे यूथ जो है या सोलो ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाएं, कैसे बजट हैंडल करें। मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए आसपास की जगहों का, हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1,000-2,000 में ही हो जाए। तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है, तो उससे आप ना लॉन्जेविटी ला सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में, किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा।
0: और अब आपसे ये जानना चाहेंगे, जितनी आसानी से श्वेता ने कहा कि हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पस नहीं है कि उस चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है, क्या वाकई ही इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर?
1: मुझे लगता है श्वेता ने झूठ बोला है, इससे भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा कॉन्टेंट है स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम लोगों ने जब इनिशियली ट्रेवल स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ। हम लोग सच में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के दोनों अपने लाइफ में कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे थे। शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं मीडिया एडिटिंग कर रहा था। जब इसने जॉब छोड़ी श्वेता ने, तो हमने सोचा कि हम इसको ना एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कॉन्टिन्यूटी रखते हैं इसमें। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की, स्टोरी मतलब वो रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ के उसने ट्रेवलिंग करना शुरू किया है। बट ट्रेवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग हमारे पास सिर्फ ऐसे 10-12 हजार रुपए थे दोनों के पास मिला के, ये हमारी सेविंग्स थी। तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रेवल किया, एक हफ्ता जब हमने ट्रेवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कॉन्टेंट संभालूंगा और तुम पूरा फाइनेंस संभालो। तो ये हमारी स्टोरी चली, तो क्या हुआ कि विद इन 3 मंथ्स हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और सिर्फ 10,000 से हमने शुरू किया था उस टाइम।
0: आपके जवाब में एक्चुअली 2-3 ऐसे पॉइंट आए जहां पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है। एक तो ये कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस, वो इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी आगे कैसे होगा। और जो आपने एक जिक्र किया कि आपके पास 10,000 फॉलोअर्स थे, वो 10,000 भी कैसे आए? और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आप कह रहे हैं आप स्टोरी सोचते हैं, हम लोग तुरंत उसको करना चाहते हैं, कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करी है, पॉलिटिकल है, या जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहां पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो?
1: हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो कंटेंट का मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों को ना दुखी नहीं करना चाहते। देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीजें होती रहती हैं आसपास। अगर हम किसी भी चीज को टच करें तो आप कभी भी सही या गलत नहीं हो सकते पूरी तरह से, लेकिन हम थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, तो इसलिए हम उन टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं। हमारा चैनल ऐसा नहीं था कि यहाँ सुपर पॉपुलर है और लोग वीडियोस देख रहे हैं, वो ये एक दो वीडियो पे व्यूज आ गए थे, इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे। हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसे वन ऑफ करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना था ये।
0: श्वेता, एक सवाल और बनता है आपसे बीच में कि आप एक

0: जॉब में थी, तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं।
1: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ। जैसे कि आप बंजिंग जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट भी बैकआउट नहीं कर रहा मुझे, ये मेरे दिमाग में लेकिन बात कौनती रहती थी कि तो सर्वाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सबको इंडिपेंडेंट तो हो गए अब। तब मैंने शुरू की फ्रीलांसिंग। पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से, फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता। तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम, जिससे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई। फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है।
0: कुछ जो अभी यूथ अभी हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या बता सकती हैं, जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे उस हिसाब से मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा, कैन यू गिव सम एग्जांपल्स?
1: हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइबर है, तो ये ना पॉपुलर वेबसाइट्स हैं।
2: देखो, जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं तो हर एक कंटेंट का एक यूएसपी होता है। जब हम आपका कंटेंट देखते हैं तो उसका एक यूएसपी है कि यूनिक वॉइस ओवर्स होते हैं, संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं, कुछ वर्ड्स हैं जैसे आप रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं।
1: लोपर गामिनी।
2: और उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है?
1: इंस्पिरेशन एक तो देखो, हिंदी ना बहुत सुंदर है, मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है। हमने स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें सीखना चाहिए था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माध्यम से हम खुद भी सीखे। हम हर बार जब स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ये स्टोरी लिखने बैठा है, जैसे अभी मैं बोलूंगी ना तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, मुझे कुछ कुछ वर्ड्स, जैसे इंग्लिश वर्ड्स जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है तो उसमें जैसे अभी बोला मैंने तो नहीं आती, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसकी हिंदी लेके आते हैं, क्योंकि लगता है हमें बेहतरीन हिंदी और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को ना बहुत मजा आता है हिंदी सुनने में, जैसे हमें मजा आता है। बाकी आधा हिस्सा इसका भी है इसमें।
3: मैं मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक था। हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, भारत माता टेम्पल है, जब हम वहां पे गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेज है, हमारा पहले टेम्पल विजिट था वो म्यूजिक, तो हम उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल करना पड़ेगा। तो जब हमने किया तो हमें खुद अच्छा लगा, और दूसरा हम एक तरह से हिंदी को थोड़ा सा ना प्रमोट भी करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं।
2: आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी, आपने पूरा इंडिया घूमा, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, तो कुछ एक्सपीरियंस हो, कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो।
1: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है, बहुत जगह कवर की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए, लेकिन अभी तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि यार यहाँ तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ जानने को मिला, और बताए ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे हमें लगा कि जब आप घूमना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना, सही में बहुत डाइवर्स है।
0: मतलब जो डाइवर्सिटी हम किताबों में पढ़ते हैं उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है तो फिर वो डेफिनेटली वो हमें
1: बहुत ही मददगार होता
0: है। एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती है, लाइक ट्राइपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
3: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है वो ना ओवरथिंक करते हैं चीजों को। हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था, हमारे पास एक फोन था, उसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी, और हमारे चैनल 3 महीने में जो हमारा 1 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ। उसके आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी। मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना, एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, अब जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक। आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं हो सकती है, या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है। तो जो हमारे पास है सबसे पहले में उससे ही स्टार्ट करना चाहिए, वो ही इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने GoPro भी लिया, फिर हमने अलग अलग कैमराज खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब ना बस हिंड्रेंस है, ये सब हमारी उसमें काम में बाधा डाल रहा है। अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है और मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेके चल रहा हूँ, तो मेरे लिए आसान नहीं है। तो हमने ये रियलाइज किया कि एक अच्छा फोन लीजिए आप, और उसी फोन से आप जितना हो सके उतना खींचे,
0: और छोटे मोटे जो आपको उसकी एक्सेसरीज, मतलब जैसे ट्राइपॉड,
3: यस यस, जितना छोटा हो सके, मतलब
1: कॉम्पैक्ट रखो।
3: जो गोल है, गोल ये नहीं है कि दूसरों के लिए आसान बनाना है, गोल ये है कि मुझे अपने लिए काम आसान बनाना है।
0: लास्ट सवाल एक्चुअली मेरा आपसे यही होने वाला था कि क्या लगता है फॉलोअर्स और सक्सेस?
1: सक्सेस मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं जो बना रही हूँ उससे मैं खुश हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स। हमें ऐसा लगता है जो हमने इतने चार सालों में एनालाइज किया है कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है. हम जब लोगों से बात करते हैं बहुत मजेदार लगता है. ये है सक्सेस हमारे लिए कि हमारी बात जो है वो इस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसके और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं. आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी ना उसमें जो आइसक्रीम खाई थी वो बहुत मजा आया था. वो जो बच्चे तो वो है सक्सेस हमारे लिए. फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K है इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे, तो वो हमारे लिए नंबर है. बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं.
3: आपके पास जो है जैसे है वहां से स्टार्ट करो. पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट एंड इट विल वर्क आउट अगर आपने इनफ मेहनत करी है तो.
0: श्वेता और सौरभ की बातें सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है. वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए. लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती. कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है, तो कोई घर के जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है, और पढ़ाई भी ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो. और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं, ना उम्र की, ना दूरी की, ना परिस्थिति की. आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं. स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में.
4: जी धन्यवाद.
0: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उस नीति को आए हुए भी अब समय हो गया है, और जो ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
4: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है. ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रख के सारी मेथोडोलॉजी डिजाइन की जाती है. मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, मान लीजिए स्वरोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें. मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है.
0: तो आपको क्या लगता है कि अभी जो जन सामान्य में जो जागरूकता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, इस तरह के कोर्सेज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, वो किस स्तर पर है और उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
4: जागरूकता का स्तर तो काफी अच्छा है, खासतौर से कोविड के बाद जब लोगों ने देखा कि सारे वेज एंड मीन्स बंद हो गए हैं लर्निंग के, तो वहां पर दूरस्थ शिक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट विकल्प के रूप में उभर के आया और अब ये युवाओं की एक तरह से चॉइस बन चुका है. खासतौर से ऐसे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक उच्च कोटे की अध्ययन सामग्री मिलती है जिसको अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कंपटीशन में सेलेक्ट होने के संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं. प्लस वो अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे उन्हें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए कहीं पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है तो वो उसको भी कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं. प्लस जो दूरस्थ शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद से जो डिजाइन किए जा रहे हैं उसपे ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कॉम्पोनेंट है.
0: जी
4: तो अगर आप सामान्य बीए, बीकॉम, बीएससी भी कर रहे हैं तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कंपोनेंट हैं कि अगर आप जो सरकारी सेवा है उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती. ऐसे ही जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास भी अवसर है. तो यहां पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड हो.
0: जिनकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी कारण से, वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है तो किस तरह इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, अगर इग्नू की बात करें तो?
4: देखिए, ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है. कोई माइग्रेशन, कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है. आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें अपने नॉलेज को एनहांस करना है, आप विश्वविद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं. कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है 10+2 आपने किया हो, ज्यादातर कोर्सेज कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है, सिंपल इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे, और अगर वो सारी चीजें सही हैं तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट, यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते मगर हमें अवसर मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ाना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज की इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरेंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और फिर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है। तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले अंक में। पत्रिका में हमारे सहयोगी रहे नेत्रा और प्रांजल के साथ। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विदुषी स्मिता मोकाशी का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार, इन टुडेज ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय विदुषी स्मिता मोकाशी।
0: सुरों की साधना और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मोकाशी पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है।
1: अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन विदुषी स्मिता मोकाशी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नोट्स एंड थरोली एब्जॉर्ब द रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल सिंगिंग। हर वॉइस हैज बीन ब्यूटिफुली नर्चर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ लेजेंडरी गुरुज इंक्लूडिंग पंडित अजय पोहनकर।
0: तानसेन और अमीर खान जैसे प्रतिष्ठित समारोह की आप शोभा बढ़ा चुकी है। प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन के नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है।
1: शी हैज ग्रेस्ड प्रेस्टिजियस म्यूजिक फेस्टिवल्स लाइक द तानसेन समारोह एंड उस्ताद आमिर खान समारोह, लिविंग एन इंडेलिबल मार्क विद हर सिंगिंग फ्रॉम द प्रयाग महाकुंभ टू द नेहरू सेंटर इन लंदन।
0: आपको कलाश्री और मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है।
1: ऑनर्ड विद सेवरल एकोलेट्स इंक्लूडिंग द कलाश्री एंड मोहम्मद रफी अवार्ड्स, हर परफॉर्मेंसेस आर नॉट ओनली टेक्निकली फ्लॉलेस बट ऑल्सो डीपली रिफ्लेक्ट द सोल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक।
0: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही हैं राग मारू बिहाग। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है मान तज देहो प्यारे। मध्यलय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है मानो ना जियरा मोरा। और एक ताल में निबद्ध द्वित रचना की बोल है मानो ना ही तुमरी बात। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: टू बिगिन हर रिसाइटल टुडे शी प्रेजेंट्स राग मारू बिहाग। द फर्स्ट इज विलंबित कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स मान तज देहो प्यारे। दिस इज फॉलोड बाय अ मध्यलय कंपोजिशन सेट टू तीन ताल विद द लिरिक्स मानो ना जियरा मोरा। शी कंक्लूड्स दिस राग विद अ द्रुत कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स मानो ना ही तुमरी बात। अकंपनिंग हर ऑन द तबला इज गांधार राजहंस एंड ऑन द हारमोनियम इज प्रमोद बोरगांवकर।

0: ये था विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन राग मारू बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही है राग रागेश्री। त्रिताल मध्यलय में निबद्ध रचना की बोल है साजन बिन सुनी एरी आली, और द्रुत एक ताल में निबद्ध बंदिश के बोल है राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री, दैट वॉज विदुषी स्मिता मोकाशी रेंडरिंग राग मारू बिहाग। स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री। द फर्स्ट इज मध्यलय कंपोजिशन सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स साजन बिन सुनी एरी आली। दिस विल बी फॉलोड बाय अ द्रुत बंदिश सेट टू एकताल विद द लिरिक्स राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।

0: विदुषी स्मिता मुकाशी द्वारा प्रस्तुत ये था राग रागेश्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: यू आर लिस्निंग टू राग रागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी स्मिता मुकाशी। अकम्पनिंग हर ऑन द तबला वॉज गांधार राजहंस एंड ऑन हारमोनियम वॉज प्रमोद बोरगांवकर।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टूडेज ऑल इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक कम्स टू एन एंड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वयक की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहाँ विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा, साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉ सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।